0: मोहब्बत का पैगाम। अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत, आवाज थी मोहम्मद अजीज की। फिल्म का गीत लिखा था अनजान ने और संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने।
1: वासांसी जीड़ानी यथा विहाय।
2: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
1: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
2: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
1: हाँ हाँ वहीं, उसके संचालक हैं श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
2: 8858920259।
1: 8858।

0: के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है।
1: हाँ हाँ वही, उसके संचालक हैं श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
0: 8858920259
1: 8858920259।
2: श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत है। आवाजें आशा भोसले और नितिन मुकेश की, और फिल्म का नाम है मुलजिम।

0: मुलजिर फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में ये गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं नकाब फिल्म में आशा भोसले को। गीतकार हैं फारूक कैसर और संगीत दिया है कमल मकदूम ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अगला गीत सुनते हैं एक बार फिर आशा भोसले और साथियों की आवाज में, जलजला फिल्म से। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं आरडी परमन।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज आप सुनेंगे गोट गायन। मुख्य गायक कलाकार होंगे हरवंश पाल व साथी। सहगायक कलाकार होंगे गणपत पाल और भगवान दास।

मीडियम वेव और प्रसार भारती की ऑफिशियल एप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनिए समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 100

0: 40 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू

0: मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी।

0: लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai, kyunki ye naya consumer hai jo economy ko drive karta hai, use ultimately middle class ke liye avsar bante hain, yani garibi kam hona keval welfare ka hi vishay nahi hai, yah

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार पद्मा तलवलकर से गायन राग था जौनपुरी। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों।

0: का कार्यक्रम लोक रंग, इसमें मुख्य गायक कलाकार हैं हरवंश पाल व साथी, और सहगायक कलाकार हैं गणपत पाल और भगवान दास। चमीटा पर हैं गिरिजा प्रसाद पाल और ढाक पर हैं नारायण दास पाल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोट गायन, लेकिन पहले सुनिए ये अंतराल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मंदिर की माता।
2: इसी गोट गायन के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इसमें आज मुख्य गायक कलाकार थे हरवंश पाल व साथी और सह गायक कलाकार थे

गणपत पाल और भगवान दास, चमीटा पर थे गिरजा प्रसाद पाल और ढाक पर थे नारायण दास पाल। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, धुन बनाई है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल। श्रोता, अमिताभ भट्टाचार्य बॉलीवुड के एक प्रमुख और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार व गायक हैं। 16 नवंबर 1976 को लखनऊ में जन्मे अमिताभ ने देव डी, अग्निपथ, ये जवानी है दीवानी और दंगल जैसी फिल्मों के लिए शानदार गीत लिखे हैं। अपनी सहज और आम बोलचाल की भाषा वाले गीतों के लिए वे खासे लोकप्रिय हैं। लीजिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म है ऐ दिल है मुश्किल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ब्रेकअप सॉन्ग। इस गीत को गाया था प्रीतम अरिजीत सिंह, बादशाह जोनीता गांधी और नकास अजीज ने।

अमृता और नीरज श्रीधर की आवाज में अभी आपने सुना रेडी फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। श्रोता, अमिताभ भट्टाचार्य के बारे में कुछ मुख्य और दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं। सपनों का सफर। अमिताभ गायक बनने के साथ सपने के साथ ही लखनऊ से मुंबई आए थे, लेकिन वे गीतकार के रूप में सफलता मिली। 2008 की फिल्म आमिर से उन्होंने बतौर गीतकार शुरुआत की।

उनकी बड़ी सफलता फिल्म देवडी का गाना इमोशनल अत्याचार थी। प्रसिद्ध गाने उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गानों में चन्ना मेरिया, एक तारा, बदतमीज दिल, कबीरा, बलम पिचकारी और गेरुआ शामिल हैं। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को अगर जिंदगी फिल्म आईएम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केसरिया, ब्रह्मास्त्र और उल्लू का पट्टा, जग्गा जासूस जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्हें अपने करियर में कई मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स और आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज में चेन्नई एक्सप्रेस का फिल्म का ये गीत।

श्रोता अमिताभ भट्टाचार्य को आईएम फिल्म के गीत अगर जिंदगी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और अग्निपथ के गीत अभी मुझमें कहीं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एक गीतकार होने के साथ साथ उन्होंने एक तारा, वेक अप सिड और पुंगी एजेंट विनोद जैसे कई प्रसिद्ध गाने गाए भी हैं। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं थैंक यू फिल्म से। गीत गाया है नीरज श्रीधर और जावेद अली ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना थैंक यू फिल्म का ये गीत। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का ये गीत। गीत गाया रिजीत और सुनिधि चौहान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनते हैं रब्बा मैं क्या करूं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं राज पंडित, विधि शर्मा और बेनी दयाल की।

इसी गीत के साथ ही एक ही गीतकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आपने सुने प्रसिद्ध गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे कुछ फिल्मी गीत।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, सुनिए जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में इस साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एसडीआरएफ के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामय उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों से संवाद कर रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा की गई पहल पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम श्योपुर जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालूठिया का और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए पत्रिका कार्यक्रम खेल पत्रिका। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, खेल उस तरह के सहज, प्रयोगशील और स्वयं करने वाले चरित्र का निर्माण करता है जिसकी हमारे भविष्य को आवश्यकता है। श्रोताओं, इसी प्रेरक विचार के साथ माह के चौथे मंगलवार को कार्यक्रम खेल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकारिए मेरा यानी अर्चना जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ चर्चाएं, होंगी खेल जगत से जुड़ी खास खबरें और साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे गीत संगीत के माध्यम से। लेकिन पहले कर लेते हैं एक छोटी सी चर्चा आईपीएल 2026 की धूम इस विषय पर। श्रोताओं, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल

नहीं बल्कि एक धर्म और राष्ट्रीय जुनून है। छोटे बच्चों की गली मोहल्ले की बस्ती से लेकर अरबों रुपयों के आईपीएल तक ये देश के हर हिस्से में लोगों को एकजुट करता है। राष्ट्रीय टीम की अंतर्राष्ट्रीय जीत और स्टार खिलाड़ियों की लोकप्रियता इसे संस्कृति का हिस्सा बनाती है। श्रोताओं, इंडियन प्रीमियर लीग ने इस क्रेज को एक त्योहार में बदल दिया है। मनोरंजन, ग्लैमर और खेल का मिश्रण इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पसंदीदा बनाता है। श्रोताओं, वर्ष 2026 में आईपीएल की धूम पूरे देश में रही। इस वर्ष इस प्रीमियर लीग का आयोजन 28 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक भारत के 13 विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच खेले गए। श्रोताओं, वर्ष 2026 में 19वें सीजन में कई रोमांचक मुकाबले हुए, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार बैक टू बैक ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। श्रोताओं, इस वर्ष ओपनिंग मुकाबला 28 मार्च वर्ष 2026 को आरसीबी और एसआरएच के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्रोताओं, खेल को निष्पक्ष और अनुशासित बनाने के लिए इस वर्ष बीसीसीआई ने कुछ सख्त नियम लागू किए, जैसे होम टीम को अपनी पिच पर प्रैक्टिस करने के लिए मात्र 3 घंटे ही दिए जाएंगे। इसके अलावा मैदान पर केवल 16 आधिकारिक खिलाड़ियों को रहने की अनुमति दी गई। श्रोताओं, वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए राजस्थान रॉयल्स के सबसे कम उम्र के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने। 15 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 48.50 की औसत से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की, वहीं 45.75 की औसत से 732 रन बनाकर शुभमन गिल ने दूसरे स्थान पर और 45.12 की औसत से 722 रन बनाकर साई सुदर्शन ने तीसरा स्थान हासिल किया। श्रोताओं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस व सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों टीमों ने 18-18 अंक हासिल कर क्वालिफायर मुकाबलों में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जबकि चौथी टीम बनी राजस्थान रॉयल्स। पहला क्वालिफायर मैच 26 मई वर्ष 2026 को धर्मशाला में खेला गया, जबकि दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 29 मई 2026 को खेला गया। क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराया, जबकि दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। श्रोताओं, क्वालिफायर टू के पहले एक रोमांचक एलिमिनेटर मैच में 29 मई को राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर टू में प्रवेश किया और इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फाइनल मैच में 31 मई 2026 को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने 75 रनों की तूफानी नाबाद पारी खेली। श्रोताओं, इस वर्ष इस सीजन में सबसे बड़ी धूम 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने मचाई। इस युवा खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन के जरिए ऑरेंज कैप के अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी हासिल किया। इस युवा खिलाड़ी ने देश के ही नहीं बल्कि विश्व के लाखों करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल जीतकर उन्हें अपना फैन बना लिया। कुछ इस तरह

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म ऑलराउंडर से। गायक स्वर थे आशा भोसले एवं साथियों के। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं वार्ता जीवन में खेलों के प्रभाव। वार्ताकार हैं रेखा मिश्रा।
1: नमस्कार, आज हम जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे जीवन में खेलों का महत्व से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले ले शारीरिक स्वास्थ्य। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। आजकल के जीवन में शारीरिक फिटनेस सबसे ज्यादा, लोग क्या क्या नहीं करते शारीरिक फिटनेस के लिए। खेलों में भाग लेने से शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है, जिससे हम अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है खेलों में भाग लेने से, जिससे हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलों में महत्व लेने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहली बात, तनाव कम रहता है। आजकल लोग तनाव कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया यूज करते हैं। खेलों में भाग लेने से तनाव कम होता है, जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। खेलों में सफलता प्राप्त करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिसमें हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी खेलों का बहुत महत्व है। सामाजिक संबंधों में

सुधार आता है, खेलों में भाग लेने से सामाजिक संबंधों में सुधार होता है, जिससे हम अपनी सामाजिक जीवन में बेहतर बना सकते हैं। टीम वर्क और सहयोग, खेल में भाग लेने से टीम वर्क और सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, जिससे हम अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन और नैतिक मूल्य में भी खेलों में भाग लेने से, जैसे अनुशासन, खेलों में भाग लेने से अनुशासन में सुधार होता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक मूल्य, खेलों में भाग लेने से नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व बहुत अधिक है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मध्य प्रदेश में खेलों का पुराना इतिहास है। पारंपरिक तौर में मध्य प्रदेश में कबड्डी, खो खो और गिल्ली डंडा जैसे खेल लोकप्रिय हैं। आज भी इन खेलों के प्रति जनमानस में लगाव है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे तमाम खेल आज भी लोकप्रिय हैं। ये अंग्रेजों के आगमन के साथ ही तमाम यूरोपीय खेल ने भी हमारे यहाँ पे जगह बनाई है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर इन खेलों के प्रमुख केंद्र थे। इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक विषय के धीरे धीरे प्रगति कर रही है। वास्तविक रूप से आयोजित किए जाने वाले मैदानी खेल बहुत लाभदायी होते हैं तथा इनमें लड़कों के प्रतिशोध की स्वस्थ भावना साथ साथ नियुक्ति तथा अनुशासन आदतें पनपती हैं। खेलों का महत्व, खेलों में जीवन एक अधिक महत्व है। खेलों से जीवन में खेल इतना आवश्यक है, जैसे जीने के लिए सांसें आवश्यक होती है, व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना जरूरी है। पढ़ाई को स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए खेल अनिवार्य है। खेल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि खेल एक व्यक्ति के लिए अच्छा व्यायाम है। खेलने से कसरत होती है, खाओ पियो हजम होता है, छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती है, एक भूख लगती है, व्यक्ति की पाचन क्रिया में सुधार होता है, बढ़ने वाले लोग शारीरिक विकास होता है, खेलों की चुस्ती सुप्रति प्राप्त होती है, आलस दूर भागता है, मन प्रसन्न रहता है। मन में आवश्यकता में पढ़ाई जैसा कोई भी कार्य भली भांति किया जा सकता है। जीवन स्वयं में एक खेल है। जिस प्रकार खेल में उतार चढ़ाव आता है तथा हार जीत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है। खेल खेलना हार जीत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में परस्पर सहयोग और प्रेम बहुत महत्व है। इसी में संसार रहना योग बनता है। खेल कुल एक परंपरा सहयोग तथा प्रेम की भावना बढ़ाती है। मैच तथा खेल टीम भावना खेले जाते हैं। ये खेल ही संपूर्ण मानव जाति का एक सूत्र प्रयोग समता रखता है। फिर चाहे क्रिकेट हो या हॉकी, इसमें परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। सहयोग एकता का दूसरा नाम है। एकता समाज अथवा राष्ट्र मजबूत तथा शक्तिशाली बनाता है। अनुशासन जीवन में बहुत महत्व है। खेलों के अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण मिलता है। कोई भी खेल अनुशासन अथवा नियमों से प्रदान रखकर खेला जाता है। अनुशासन में रहकर मनुष्य जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। यदि कहा जाए तो खेलने से सफलता जीवन जीने का प्रशिक्षण मिलता है तो गलत ना होगा। खेलकूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है। खेलकूद के विषय एक अंग समझकर अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो खेलों को देसी दर्जा प्राप्त है। देसी खेलों के प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टि से विभाग ने प्रयासों में मलखम को राज्य खेल दर्जित किया गया है। मलखम भारत का प्राचीन देशी खेल है जो हमारी संस्कृति और पर्यटन गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। मलखम एक परीक्षण के लिए जिले बैतूल, इंदौर, खरगोन, पन्ना, ग्वालियर, दतिया, साजपुर, उज्जैन, रतलाम, सागर, छतरपुर, जबलपुर और टीकमगढ़ के केंद्र में स्थापित किया गया है। मलखम अखाड़ों के लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन तैयार की गई है जो प्रदेश के एक प्राचीन पर्वत अखाड़ों के डिजाइन पर आधारित है। यह विभाग खेलकूद तथा स्वास्थ्य के चंद्रमुखी विकास हेतु योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वयन हेतु सहयोग देते हैं तथा एक प्रतिष्ठित समिति के रूप में राज्यों के खेल स्थापनों के खेल संगठनों में मान्यता प्रदान करता है। पुरस्कार
पुरस्कार प्रतियोगिता योजना तथा खेल एवं खिलाड़ियों के विषय कल्याणकारी सुझाव के प्रति शासन समुचित प्रदान करता है। स्तरीय प्रतियोगिता योजना करने पर 30,000 की अनुमति राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक विषय कार्यक्रम में बीएड के अनिवार्य किए जाएंगे एवं खिलाड़ी जो परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं उनके अलग से परीक्षा ली जाएगी। अब हम

0: ंगे मध्य प्रदेश में खेल नीति 30 जून को 2004 को खेल विकास के उद्देश्य में नवीन खेल नीति अनुमोदित की गई। खेल नीति के नीतिक बिंदु स्कूल शिक्षा एवं आत्मिक जाति कल्याण विभाग के स्कूल में सांस्कृतिक शिक्षाओं की भर्ती खेलों में परिणत रखने वाले खिलाड़ियों को तक का प्रथक अध्ययन भारतीय नियमों आवश्यक संशोधन किया जाएगा को प्राप्त बुनियादी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। भोपाल की बड़ी एवं छोटी झीलों को और जल कीड़ों का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। 6वीं ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग आदि साहसिक गतिविधियों को जिला स्तर पर विकास किया जाएगा। प्रत्येक से अधिक आबादी वाले गांव में आगामी 5 वर्ष के चंद्रवन तरीकों से खेल मैदानों पर व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु गाँव के चिन्हित किया गया है तथा इन गाँवों में मैदान निर्माण कार्यक्रम संबंध आसन निशोध जारी कर दिए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कबड्डी, तेज दौड़, उच्च कूद, कुश्ती, वॉलीबॉल तथा धुन वृद्धि जैसे खेलों में अंतर ग्राम पंचायत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रसिद्ध समस्त जिलों में यह प्राचीन खेलों में चिन्हित करके कम से कम एक प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। अब आखिरी में हम यही बोलना चाहेंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, यह कहावत आज निर्धार हो गई है। माता पिता आज जान गए हैं कि बच्चों को मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास होना चाहिए। व्यक्ति संपूर्ण जीवन तन और मानसिक रूप से गढ़ी चला जाता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे हो जाओगे खराब, यह कहकर आज के निर्धार हो गई है। माता पिता आज जान के हो गए हैं बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जीवन में खेलों का महत्व। वार्ताकार थी रेखा मिश्रा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर। तुम आज जिस मुकाम पर हो, घंटों की मेहनत और जिन कोचों ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सबके पीछे एक नन्ही बच्ची छिपी है जिसे इस खेल से प्यार हो गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी के लिए खेलो। श्रोताओं, ये कहना है अमेरिका की राष्ट्रीय फुटबॉल महिला प्लेयर मिया हैम का, जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से ओलंपिक में 2 बार पदक दिलाया, 1 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक। श्रोताओं, मिया हैम के लिए ये करना इसलिए आसान रहा क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि उनके पिता ने स्वयं उन्हें और उनके भाई को गाइड किया। श्रोताओं, एक सर्वे के अनुसार जिन लड़कियों के माता पिता या परिवार खेलों में जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या उन्हें खेल में भाग लेने के अवसर खोजने में मदद करते हैं, उन बेटियों के खेल में बने रहने व सफल होने की संभावना अधिक होती है। श्रोताओं, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जब परिवार का साथ होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना और प्रबल हो जाती है और एक महिला एक बेटी को आगे बढ़ाने में परिवार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। श्रोताओं, वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन आज भी कई परिवारों में खेलों को कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता, खासकर बेटियों के लिए। इसके कई कारण हैं, जैसे सुरक्षित खेल के मैदान की कमी, उचित प्रशिक्षण और खेल उपकरणों की कमी। लेकिन प्रमुख कारण है एक बेटी होने के कारण सर्वप्रथम उसकी सुरक्षा का भय। तो परिवार को बेटी को ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि उसे कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि वो बेटों से कम है या वो एक लड़की है। जब भी वो किसी खेल को खेलने के लिए अपनी रुचि दिखाए तो उसे पूरा सहयोग दें। उसे कब उठना है, कब सोना है, उसे क्या खाना है, उसे कितना वर्कआउट करना है, उसे किस जगह जाकर प्रशिक्षण लेना है, इन सभी बातों का ध्यान रखें और उसे भी इन सब से अवगत कराएं। और यहां तक कि उसके साथ हर जगह पे आप जाकर के उसको हर जानकारी से परिचित कराएं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे हतोत्साहित न करके उसे पूरा सहयोग दें। श्रोताओं, नियमित खेल गतिविधियों से बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी शारीरिक क्षमता मजबूत होती है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। खेल हमारी बेटियों में नेतृत्व, टीमवर्क और जीवन में चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं, जिससे वे पेशेवर जीवन में बेहतर मुकाम हासिल करती हैं।

आज भारत ही नहीं वरन विश्व की कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर अपना, अपने परिवार व अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। आज परिवारों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है, तभी तो बेटियां खेलों में नित नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। और श्रोताओं, अब इस चर्चा को देते हैं विराम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। श्रोताओं, इस पहली खबर में बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून 2026 को हो चुका है। इस मुकाबले का फाइनल मैच 5 जुलाई वर्ष 2026 को खेला जाएगा। ये T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। ये पहली बार है जब महिला T20 वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप ए व ग्रुप बी में कुल 33 मैच खेले जाएंगे। श्रोताओं, वर्ष 2025 की विश्व विजेता भारतीय टीम ने पहले ही मैच में पाकिस्तान को 64 रन से और दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया, जबकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद वो 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ग्रुप ए में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दोस्तों, ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम ने 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हासिल कर लिए और वो इस वक्त सबसे आगे चल रही है। श्रोताओं, आज यानी 23 जून को अलग अलग मुकाबलों में अलग अलग स्थानों पर खेले जाएंगे 3 मैच, जिसमें पहला मैच न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड ब्रिस्टल काउंटी मैदान पर भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा और दूसरा मैच भी इसी मैदान पर श्रीलंका व आयरलैंड के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान के बीच हैंडिंगले लीड्स में तीसरा मैच भारतीय समयानुसार रात्रि 11 बजे से खेला जाएगा। और श्रोताओं, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, अब आईआईटी में छात्र प्रवेश ले सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के तहत, क्योंकि खेल के चैंपियंस के लिए पहली बार स्पोर्ट्स कोटे की शुरुआत की गई है। हालांकि इसके लिए जेईई एडवांस एग्जाम जरूरी है। आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, मंडी और रुड़की, इन 5 संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। श्रोताओं, आईआईटी मद्रास व खड़गपुर में 2 सीट्स एक्स्ट्रा रहेंगी, जबकि इंदौर, रुड़की व मंडी में 1-1 सीट एक्स्ट्रा रहेगी। इन संस्थानों में उन छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में इंटरनेशनल, नेशनल या नेशनल लेवल पर जैसे खेलो इंडिया, ओलंपिक्स में कोई पदक जीता हो या फिर देश का प्रतिनिधित्व किया हो। और श्रोताओं, अब रुक करते हैं अगली बेहद खास व रोमांचक कर देने वाली खबर की ओर। श्रोताओं, फीफा वर्ल्ड कप के रोमांच से तो शायद ही कोई हो जो बच पाया हो, और वर्ष 2026 का संस्करण इतिहास का सबसे बड़ा और पहला ऐसा संस्करण है जिसका आयोजन 3 देश अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप अमेरिका के अलग अलग 11 शहरों की कहानी कह रहा है। वहीं अमेरिका ने भी इस वर्ल्ड कप को एंटरटेनमेंट का पैकेज बनाया है। श्रोताओं, वर्ल्ड कप फीफा का आगाज 11 जून से 13 जून तक कनाडा, अमेरिका व मैक्सिको में बड़े रंगारंग तरीके से हुआ। ये विश्व कप 16 जुलाई 2026 से 16 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस बार कुल 48 टीमों को 12 समूहों में बांटा गया है। विश्व कप फीफा में इस बार 104 मैच खेले जाएंगे। पहली बार 90 मिनट के खेल के दौरान 2 अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक जोड़े गए हैं। इस बार विश्व कप में प्रयोग की जा रही आधिकारिक बॉल एक गैजेट की तरह है जिसे मैच से पहले रिचार्ज किया जाता है। इसमें रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग सेंसर मौजूद है। और श्रोताओं, ताजा परिणाम के अनुसार पहले दिन के मैच में मेजबान टीम मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। दूसरे दिन अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराया। 96 वर्ष बाद किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने डबल गोल किए। तीसरे दिन की खास बात यह रही कि 5 बार की चैंपियन रही ब्राजील की टीम विजयी तो रही, पर उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। वहीं वर्ष 1990 के बाद स्कॉटलैंड को पहली जीत मिली।

इसी दिन कतर व स्विट्जरलैंड का मैच भी ड्रॉ रहा। चौथे दिन स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से हराया। वहीं ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। जापान व नीदरलैंड्स का मैच भी ड्रॉ रहा। वर्ल्ड कप का 5वां दिन भी ड्रॉ के नाम रहा। श्रोताओं, 6वें दिन लियोनेल मेसी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हैट्रिक लगाते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया और नॉर्वे ने इसी दिन इराक को 4-1 से हराया व फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। श्रोताओं, 7वें दिन रोनाल्डो की टीम कुछ खास नहीं कर सकी और उन्हें ड्रॉ के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया और पुर्तगाल व कांगो का मैच ड्रॉ रहा। श्रोताओं, 8वां दिन मेजबानों के नाम रहा। कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर एक तरफा जीत हासिल की। इसके अलावा मैक्सिको नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसी दिन स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया। श्रोताओं, 9वें दिन के खेल में ग्रुप डी में पैराग्वे ने तुर्की को हराकर नॉकआउट की होड़ से बाहर कर दिया। वहीं मोरक्को ने स्कॉटलैंड को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। और 10वें दिन जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से हराया और ग्रुप डी में कराकाओ ने इक्वेडोर के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। श्रोताओं, ग्रुप ई में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया। और श्रोताओं, 11वें दिन मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। वहीं ईरान ने बेल्जियम को ईरान व बेल्जियम में 0-0 की बराबरी पर मैच समाप्त हुआ। वहीं केप वर्डे व उरुग्वे के बीच भी 2-2 की बराबरी पर मैच समाप्त हुआ। श्रोताओं, मिस्र ने 9 प्रयासों के बाद वर्ल्ड कप में पहली जीत इस दिन हासिल की। और श्रोताओं, इस विश्व कप में 68 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूटा है। फुटबॉल के इस महाकुंभ के प्रारंभिक 33 मैचों में 100 गोल किए जा चुके हैं। ग्रुप एफ में जापान व ट्यूनिशिया के बीच खेला गया मैच वर्ल्ड कप के इतिहास का 1000वां मैच रहा। श्रोताओं, वर्ष 2026 का ये विश्व कप कई नई खिलाड़ियों का डेब्यू मैच है तो कई दिग्गज खिलाड़ियों का ये अंतिम विश्व कप है। श्रोताओं, खबरों के अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अंतिम 8 मुकाबलों में रोनाल्डो व मेसी आमने सामने होंगे। और श्रोताओं, इस अंतिम खबर में बात करेंगे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की। 15 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी का चयन टीम इंडिया में हो गया है और इस चयन के बाद उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाया। उन्होंने 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया। तो श्रोताओं, ये तो थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। और आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है तो अनुमति दीजिए। प्रवक्ता अर्चना जैन, प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम खेल पत्रिका, प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र निधि पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम के शुरुआत में लीजिए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

गंगा मैली इस फिल्म का ये गीत आवाज थी लता मंगेशकर की और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजने वाले आप सभी श्रोतागण हैं ग्राम बिडौरा तहसील सेवड़ा जलादतिया मध्य प्रदेश से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर यशपाल गुर्जर जयपाल गुर्जर महिपाल गुर्जर नंदिनी मानवी नैना सूर्यांश गुर्जर ग्राम तीतरा खलीलपुर जिला जालौन से अंजलि सिंह जाटव ऋषि जाटव आकांक्षा राघवेन्द्र जाटव इसी गीत को पसंद किया था। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल अनीता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दादी ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महोबा उत्तर प्रदेश से यह पत्र हमें मिला है। ओम प्रकाश नामदेव श्रीमती पुष्पा नामदेव कुमारी मेघा घटा रंभा वर्षा शिल्पाल का परी भूमिका नामदेव ग्राम श्यामा छोर पोस्ट बराकीरतपुरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से पंचूलाल कुशवाहा चतुरबाई जयंती कुशवाहा नवल किशोर गायत्री कुशवाहा इसी गीत को पसंद किया था। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा

पुष्पा नामदेव कुमारी मेघा घटा रंभा वर्षा शिल्पालका परी भूमिका नामदेव ग्राम श्यामा छोर पोस्ट बराकीरतपुरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से पंचूलाल कुशवाहा चतुर्भाई जयंती कुशवाहा नवल किशोर गायत्री कुशवाहा इसी गीत को पसंद किया था। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र यादव अरविंद रागनी रिया रेणु दिव्यांशी आराधना रोनिका यादव रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। हनुमान जी मंदिर के पास नरसिंहगढ़ पूर्वा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा भवानी देवी नारायण दास कुशवाहा इंदु देवी भागीरथ कुशवाहा ममता देवी यशराज आयुष भूमि रिक्की राम ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से चंद्रभान नामदेव घासीराम कृष्ण प्रीतम रवि मंजू साधना केश कुमारी श्लोक सीमा वंदना राज एवं समस्त नामदेव परिवार इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। चेतगिरी कॉलोनी से जमुना प्रसाद कुशवाहा लाड कुंवर कुशवाहा लीला लीना और गौरव कुशवाहा ग्राम तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागल संतोष कुमार नागल प्रताप सिंह नागल अभिषेक कुमार नागल कविता नागल गुड़िया शिवम और उनके मम्मी पापा ग्राम कनाई और करतल पोस्ट पुंगड़ी तहसील नैरनी जिला बांदा मध्य उत्तर प्रदेश से यह पत्र है। सत्य प्रकाश अहिरवार ठाकुर दीन माता दीन राम एतोम प्रकाश राम रतन रवि शंकर प्रांशु किरण बबली ज्योति राजकुमारी प्रभा दीपा पूजा अर्चना मोर टक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम पटेल ज्योति पटेल शुभम देवी किशन पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक मोहस्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतस खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद सादाब खत्री मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा बबीता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी ललिता खर्चे गणेश कार्तिक नारायण भाव खर्चे श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। सफर फिल्म से आवाज है मुकेश की संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। इस गीत के लिए हमें ईमेल संदेश प्राप्त हुए अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर वंदना गौहर मयंक गौहर तन्वी गौहर धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू संगीता मट्टू हर्षित एवं वैभव मट्टू जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजा राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी भाभी जय बगाज माता रेडियो श्रोता संघ कुंडेश्वर के पास ग्राम हरपुरा मडिया पोस्ट खिरिया नाका जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इंद्रपाल सिंह राजपूत देवी सिंह नारायण दास चंद्रपाल सिंह उम्मेद कुमार उर्मिला नेहा प्रेम कुमार अंकिता देवी अविता देवी आरुषि देवी औरंसी और सभी राजपूत ग्राम अजनर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सुरेश कुमार सैनी प्रीति राज दिनेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट पीपरा माफ जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से चोखीलाल प्रजापति गोलूर्फ खूबचंद्र प्रजापति वीरेंद्र दानवीर प्रियंका प्रजापति इसी गीत के लिए हमें ईमेल संदेश प्राप्त हुआ है। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनी राम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल हिमांशु पाल प्रांसी पाल निवेदिता पाल ज्योति पाल मानसी पाल सुदीपा पाल सुशीला पाल पता रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश उदय भान पाल दीक्षा पाल जय हिंद पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल ग्राम गुना बांड नंबर 15 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार राधेलाल प्रवीण श्रीमती शारदा कुमारी दीपा सीमा निशु राखी अहिरवार ग्राम पोस्ट पापेड़ तहसील सागर जिला सागर से अशोक कमल नामदेव मदन अनुरत तुलसी राकेश प्रकाश राजा नामदेव राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति श्रीमती जानकी प्रजापति घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत प्रजापति आप सभी की गुजारिश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

गीतकार हैं साहिर और संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने और पसंद आप सभी श्रोताओं की है। इस गीत के लिए हमें ईमेल संदेश मिले हैं आकाशवाणी मुंडेर रेडियो श्रोता संघ बहादुरपुर परियारपुर जिला मुंगेर बिहार से कुमार रामदेव पटेल श्रीमती सुनीता पटेल कुमार अमित पटेल श्रीमती पुष्पा पटेल आकाश पटेल वाणी पटेल इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम व गांव अलगी डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव विपिन आयुष अतुल श्रीमती फूलजी समस्त यादव परिवार देवकी विहार कॉलोनी सलारपुर सारनाथ बनारस से दुर्गेश यादव सीमा यादव अन्नू यादव और रनेश यादव श्रीमती मनसा यादव बाबू यादव पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु ताशु अनरव आनंद सत्यम आनंद इसी गीत को पसंद किया। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय तुषार तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया प्रभा देवी तामुरिया मोहल्ला हलवाई यान सिरकुट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी खान बिट्टू भैया साजदा हिना कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय चंडीगढ़ से सती सनेजा विमला अनेजा सैफ अली सैफिया अरोड़ा पूजा अरोड़ा मास्टर डेविस टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंदरजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा जिला सारगंड विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन ग्राम मामना सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू कुनिका मल्होत्रा लाडू कोयल मल्होत्रा लक्ष्म मल्होत्रा इसी गीत को पसंद किया है। छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा श्रीवास रज्जन साहू सुशील देवांगन शशिधर शायर सज्जी मंडी बुलडाना से सब्बिर हुसैन शहजाद हुसैन मंजू बाबा अनम ग्राम नवा गांव मुढ़ी पार जिला राजनांद गांव से सोहन लाल साहू श्रीमती रुक्मणी साहू तेजस्वर दास साहू कुशाल दास साहू गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा सार्थक सचिन नंदिनी प्रियंका रोहित शर्मा महाराष्ट्र श्रोता गण रेडियो क्लब आकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल नलिनी पाटिल अजन्य पाटिल आदित्य पाटिल रामटोरी तहसील भांडे जिला दतिया से सुरेश कुमार केवट जी शिशुपाल केवट छोटू केवट खुशी खुशबू पायल केवट ऋतिक अमित समस्त केवट परिवार इसी गीत को पसंद किया है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सुनीला सोनाली विश्वकर्मा सोनम आशीष विश्वकर्मा लीजिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपके पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है धनवान।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: दिन के 11 बजे हैं, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत है, मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम आज और कल।

पुल बने अंगारे फिल्म का ये गीत था, मुकेश ने गाया था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में अगला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से आशा भोसले ने गाया है। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज एसडी बर्मन की।

आरजू फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफी ने गाया था, हसद जयपुरी ने गीत लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अब असली नकली फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है, हसद जयपुरी के बोल।

हसन जयपुरी का लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, बेटी बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद लफी और सुमन कल्याणपुर ने इसे गाया है, धुन शंकर जयकिशन की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का यह गीत था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। नीला आकाश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। मदन मोहन ने धुन बनाई है और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म गीत का यह गीत था और हसन जयपुरी ने बोल लिखे थे। परिवार फिल्म का यह गीत है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ, गुलशन बावरा ने बोल लिखे हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की।

0: सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र किशन का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज थी। फिल्म थी आजाद। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश पूरी करेंगे हम इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। डोंगर गांव, जिला रांदन गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गंवाड़कर, सिद्धांत गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर की। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंवाड़कर, श्रीमती वैशाली गंवाड़कर, श्वेता सुमित गंवाड़कर, कुमारी ध्वनि गंवाड़कर परी की। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां हमें अपनी ख्वाहिश भेजते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। वारिस फिल्म का ये गीत सुनना पसंद किया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने इसे गाया है। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। महसवाड़ी तहसील मनकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। भटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। चांद का टुकड़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और विपिन सचदेव ने इसे गाया है, सावन कुमार का लिखा, महेश किशोर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सदस्य। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल और आशा सपकाल की, दुगई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और परमणी से सी आर कुलकर्णी की, शिवाजी नगर बड़ाली देश से देशमुख परिवार के सदस्य और राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई और सुनैना खोबरखेड़े, खाड़वी जलगांव जामोद से राम धाड़े, दिवाली धाड़े और स्वराज धाड़े की, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन और तनुज पवन भोड़े की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक की। यस बॉस फिल्म का ये गीत है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जतिन ललित का है और गाया है अभिजीत ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका रॉबिन की, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया की, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित और मोहित की, और साथ में है विनोद किशोरी। सुनना पसंद किया है विजयी पथ का गीत कुमार सानू और साधना सरगम का गाया, फैज अनवर ने बोल लिखे हैं और अनु मलिक की धुन है। ये पत्र और शामिल कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शिव वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा यह गीत था। कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था। फिल्म थी विजयी पथ। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का

मध्य प्रदेश है। भारतीय सेना कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने ये जाना कि धारा नगरी का राजकुमार विजय श्रवा नर्तकी भुवन मोहिनी से प्यार करने लगा था, जिससे विजय श्रवा के पिता राजा द्युम्न सेन नाराज हो गए और भुवन मोहिनी को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित नर्तकी

0: की भुवन मोहिनी पहुंच गए इंद्रप्रस्थ और वहां के नरेश आदित्य सेन से पा लिया आश्रय। परंतु कुछ ही महीनों बाद राजमाता के तानों से नाराज होकर श्रेष्ठी का वेश धारण कर राजकुमार भी इंद्रप्रस्थ आ पहुंचा। उधर इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित ही थे, जब उनको पता चला कि एक सुदर्शन व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है आश्रम में ठहरा हुआ है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।
2: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
1: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया
2: है?
1: ना भी मिले तो क्या है।
2: अच्छा, ऐसा है तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
1: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का हृदयहार खोज लिया
2: है। कहाँ था?
1: यहाँ गिरा था।
3: राजकुमारी जी को बधाई।
4: किसके लिए?
3: मणिहार के लिए।
4: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूँ।
3: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
2: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
1: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
2: अवश्य अवश्य।
5: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
4: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
5: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में
4: क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भेंट किया आपको?
4: हाँ, भारत के भावी सम्राट ने, मेरी विजय श्रवा ने।
5: ओह
4: भुवन मोहिनी, अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुखड़ा अचानक मलिन क्यों हो गया?
5: नहीं तो?
4: तो फिर मुझे भ्रम है।
5: हो सकता है।
4: क्या तुमसे भावी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
5: मुझसे? मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।
4: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
5: कौन कहता है?
4: मैं कहती हूँ।
5: अच्छा, इसका प्रमाण?
4: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्ण कुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
5: ये झूठी बात है।
4: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति, अपनी आंखों से देखा।
5: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
4: नहीं, मैं उनके शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
5: विश्वास नहीं हो रहा, क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास

0: स्थल में मेरा चित्र है।
1: हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सच है। मेरी नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना उद्विग्न कर दिया।
0: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई।
1: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजयश्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता, अधिकार, वैभव और राजलक्ष्मी उनके चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो। हो सकता है इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो। इतनी व्यग्र क्यों हो?
0: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
1: ओ रूप की जादूगरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरी मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों ना वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करें, तेरी मानसिक पूजा करें।
0: बस बस राजकुमारी, बहुत न बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहस पूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
1: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना ना सकेंगे।
0: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व है। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। परंतु
1: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? अब चाहे जैसे भी थे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थी, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और ना ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया

0: मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस दीपोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
1: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैं उनके प्रेम से तुम्हें परानमुख ना कर सकी राजकुमारी। मुझे जिन कड़वे परिणामों को प्रेम के नाम पर भोगना पड़ रहा है, संभवतः वो सब अग्नि की लपटों के दृढ़ालिंगन से कहीं अधिक हैं। जीवन में प्रलयंकर हाहाकार है, संताप है, रुदन है।
2: राजकुमारी जी, युवराज विजयश्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
1: मुझे?
0: जा, तू उस वृत्ति से कह दे कि अभी वो राजकुमार

0: है, रुदन है।
1: राजकुमारी जी, युवराज विजयश्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
0: मुझे?
2: जा, तू उस वृत्ते से कह दे कि अभी वो राजकुमारी के पास है, अवकाश पाते ही युवराज की सेवा में उपस्थित होगी।
1: जो आज्ञा।
2: सखी, आज मैं तुमसे एक याचना कर रही हूं, क्षमा करो। अपने अंतर से इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधारण नर्तकी हो और मैं राजपुत्री हूं। मैं देख रही हूं कि तुम एक असाधारण नारी हो। मैंने तुम्हारे विनम्र शिष्या बनकर तुमसे संगीत का ज्ञान और उसकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं धन्य भाव से तुम्हारी कृतज्ञ हूं।
0: इन सब के लिए हमारी तुम्हारे बीच कृतज्ञता प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में लापटका और उन्होंने साहस पूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
2: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती, वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
0: नहीं।
2: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वो किसी मूल्य पर लौटा न सकेंगे। और मैं वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो। तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता के परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिखारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगे?
0: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सके तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर

0: तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारी हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्य का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
1: ओह भवन मोहिनी,
0: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा। मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
1: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूं। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता।
0: तो चलिए,
1: कहाँ?
0: राजकुमार विजय श्रवा से मिलनी।
1: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
0: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
0: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।
2: ओहो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से न भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई, परंतु राजसी रथ में आए। प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
2: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया।
3: क्या हुआ अरण्यक?
2: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
3: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
2: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
3: क्या?
2: हाँ।
3: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूँ।
2: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
4: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी, कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह

0: मोहनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
0: एवमस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष आयोजित होने वाले संघस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल और धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया है और FIH प्रो लीग के शुरूआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति
2: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका मनचाहा कार्यक्रम महिला सभा।

बहनों, जिंदगी लंबी नहीं खूबसूरत होनी चाहिए। उम्र तो हर कोई गुजार लेता है, मगर जीना वही जानता है जो हर पल में खुशी ढूंढ लेता है। इस सुविचार के साथ आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी स्वीकार कीजिए अपनी साथी वंदना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज 23 जून है और आज का दिन समर्पित है सामाजिक कलंक, आर्थिक कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करने वाली विधवाओं की आवाज को बुलंद करने और उनके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए। दुनिया भर की विधवा महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें सशक्त करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बहनों, पूरे विश्व में 23 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2010 को 23 जून के दिन को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में अपनाया। हालांकि लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 से ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जा रहा था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य राजेंद्र लुम्बा ने विकासशील देशों में विधवा होने के बाद महिलाओं को जिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए लुम्बा फाउंडेशन की स्थापना की थी। उन्हें इस फाउंडेशन की स्थापना करने की प्रेरणा अपनी मां के संघर्षों को देखने के बाद मिली, जब 1954 में 37 वर्ष की आयु में वे विधवा हो गई थी। इसलिए इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर में विधवाओं को अपने जीवन के मुश्किल समय में जीवन गुजारने के लिए आवश्यक सहायता मिले, उन्हें सम्मान मिले, क्योंकि कई देशों में यानी कई जगहों पर विधवाओं को विरासत में मिलने वाले उनके अधिकारों से वंचित कर उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी कर दिया जाता है। बहनों, आज का दिन विधवाओं को उनके अधिकार और सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्हें जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही विधवाओं को उनकी विरासत, संपत्ति में अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, समान वेतन या पेंशन के उचित हिस्से को प्राप्त करने के लिए बल देता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। यह दिवस हर बार अलग अलग थीम के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम का विषय है विधवाओं के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक शक्ति। यह संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दुनिया भर की विधवाओं द्वारा उनके सामने जीवन में आने वाली गंभीर चुनौतियों के समाधान

संविधान को समर्पित है। तो आइए हम सब मिलकर उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करें, उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर सम्मान के साथ अपने जीवन का यापन कर सकें, जिसकी वे हकदार भी हैं, और बेहतर जीवन को जी सकें और इस जीवन की खुशियों को हासिल भी कर सकें।

0: बहनों, अभी हमने जीवन को जीने की उमंग पैदा करने वाला ये प्यारा सा गीत सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी दूर गगन की छांव में। किशोर कुमार की लिखी इस गीत को संगीत भी दिया था किशोर कुमार ने। और बहनों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण भी किशोर कुमार ने ही किया था। बहनों, इस गीत के बाद हम आपसे लेते हैं छोटा सा विराम।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: बहनों, इस अल्पविराम के पश्चात आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने मंचाहे महिला सभा कार्यक्रम में। बहनों, एक लेखक अपने आसपास घटित घटनाओं और उन घटनाक्रमों और उन परिस्थितियों का मानवीय व्यवहार और जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों, उस घटनाक्रम के बाद जो उस व्यक्ति की या उसके आसपास के समाज के लोगों की मनोदशा होती है, उन सभी को ध्यान में रखकर एक कथानक तैयार करता है और अपने लेखनी के जरिए मन में स्पर्शी शब्दों के सहारे एक कहानी की रचना करता है। बहनों, लेखक अपनी कलम के जरिए विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को बड़े ही सरल सहज रूप में अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष रखता है। तो आज इसी क्रम में हम आपको एक कहानी सुनवाते हैं माधुरी प्रजापति से। उनकी कहानी का विषय है आजाद परिंदे।
3: गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर की छत पर हर शाम एक लड़की बैठती थी। उसका नाम था आर्या। शाम का समय उसे सबसे ज्यादा पसंद था। जब सूरज धीरे धीरे ढलता, आसमान रंग बदलता और पंछी अपने घोंसले की ओर लौटते, तब आर्या चुपचाप उन्हें देखती रहती। वह अक्सर सोचती, पंछी कितने खुशकिस्मत हैं। इन्हें कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी बंदिशें क्यों हैं? आर्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, बेटी अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। लेकिन जब आर्या सिर्फ 10 साल की थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। उस दिन के बाद जैसे उसके घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गईं। उसके पिता रघुवीर सिंह बहुत सख्त स्वभाव के हो गए। उन्होंने अपने दुख को कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन उनकी सोच और भी कठोर हो गई। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, वे अक्सर कहा करते थे। आर्या चुप रहती, लेकिन उसके अंदर एक सपना अब भी जिंदा था। स्कूल ही उसकी दुनिया थी। वहाँ उसकी टीचर नेहा मैम उसे बहुत पसंद करती थी। वे हमेशा कहती, आर्या तुम्हारी आंखों में बड़े सपने हैं, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। नेहा मैम की बातें सुनकर आर्या के मन में उम्मीद जाग जाती। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था मेरे सपने। सभी बच्चे मंच पर जाकर छोटी छोटी बातें बोल रहे थे। जब आर्या की बारी आई तो पूरा हॉल शांत हो गया। आर्या ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मैं बड़ी होकर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। उसकी आवाज धीरे धीरे मजबूत होती गई। सपने देखना गलत नहीं होता, गलत तब होता है जब किसी के सपनों को जीने से पहले ही तोड़ दिया जाए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। नेहा मैम की आंखें नम हो गईं। उस दिन आर्या को पहला पुरस्कार मिला। वह खुशी खुशी ट्रॉफी लेकर घर पहुंची। बाबा देखिए मैं जीत गई। लेकिन रघुवीर सिंह ने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। इन सब चीजों से घर नहीं चलता, जाकर रसोई में मदद करो। आर्या का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से ट्रॉफी अपने कमरे में रख दी। उस रात वह छत पर जाकर बहुत देर तक रोती रही। आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी उड़ूंगी, चाहे कितनी मुश्किलें आए। आर्या के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, आदित्य। वह पढ़ाई में होशियार और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा आर्या की मदद करता। एक दिन उसने आर्या है जो पूरे होने से पहले ही डर जाते हैं। आदित्य ने कहा, सपना सच्चा हो तो डर से बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर वे साथ पढ़ते, अपने भविष्य की बातें करते। आर्या कहती, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। आदित्य मुस्कुराकर कहता, और मैं जानता हूँ तुम जरूर जाओगी। धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर फिर मुस्कान लौटने लगी। समय बीतता गया। अब आर्या 12वीं कक्षा में पहुंच गई थी। पूरे जिले में उसके सबसे ज्यादा अंक आए। स्कूल में

मिठाई बांटी गई। नेहा मैम बहुत खुश थीं। उन्होंने रघुवीर सिंह को बुलाकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, इसे शहर भेजिए, यह बहुत आगे जाएगी। लेकिन रघुवीर सिंह का जवाब वही था, लड़कियों की असली जगह घर होती है। आर्या ने पहली बार अपने पिता से कहा, बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत पढ़ ली तुम, लेकिन मेरे सपने सपनों से पेट नहीं भरता। यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकाली और देर तक उसे देखती रही। माँ अगर आप होती तो मुझे जरूर समझती। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बाहर पेड़ पर बैठे पंछी आवाज कर रहे थे। आर्या को लगा जैसे उसकी माँ कह रही हो, हार मत मानना। कुछ दिनों बाद स्कूल में शहर के कॉलेज से कुछ लोग आए, वे मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने वाले थे। नेहा मैम ने चुपके से आर्या का फॉर्म भरवा दिया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया, आर्या का चयन हो गया था। उसे शहर के बड़े कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिला था। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन घर में फिर तूफान खड़ा हो गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, रघुवीर सिंह चिल्लाए। बाबा यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आर्या चुप हो गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके सपने सच में टूट जाएंगे। उसी शाम वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। सूरज ढल रहा था, तभी उसने देखा एक छोटा पंछी उड़ना सीख रहा था। वह बार बार गिरता, फिर उठता और फिर उड़ने की कोशिश करता। आखिरकार वह आसमान में उड़ गया। आर्या उसे देखकर मुस्कुराई। अगर इतना छोटा पंछी हार नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? अगले दिन नेहा मैम खुद आर्या के घर पहुंची। उन्होंने रघुवीर सिंह से कहा, आपकी बेटी सिर्फ आपकी नहीं पूरे गांव का गर्व बन सकती है। रघुवीर सिंह चुप रहे। नेहा मैम ने फिर कहा, आप उसे रोककर उसकी जिंदगी छोटी मत करिए। काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर रघुवीर सिंह धीरे से बोले, अगर वह शहर गई और बदल गई तो? शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है, खराब नहीं। उनकी बातों ने रघुवीर सिंह के मन को कहीं ना कहीं छू लिया। उस रात उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा, वही बेटी जो हर दिन बिना शिकायत सब सहती रही। अगली सुबह उन्होंने धीरे से कहा, अगर जाना चाहती हो तो जाओ। आर्या को विश्वास ही नहीं हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सच बाबा, रघुवीर सिंह ने सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार आर्या को लगा कि उसके पंख खुल गए हैं। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी, बड़ी बड़ी सड़कें, तेज रफ्तार लोग और नई दुनिया। शुरुआत में आर्या बहुत डरती थी, उसे माँ की याद आती, अपना गांव याद आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करती, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती। धीरे धीरे कॉलेज में उसका नाम होने लगा। एक दिन कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता हुई, विषय था महिलाओं की आजादी। आर्या ने लिखा, आजादी सिर्फ घर से बाहर निकलने का नाम नहीं, असली आजादी अपने सपनों को जीने की होती है। उसका निबंध पूरे कॉलेज में प्रथम आया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, गांव में भी लोगों ने देखा। रघुवीर सिंह अखबार को देर तक देखते रहे, उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन अचानक खबर आई कि रघुवीर सिंह की तबीयत बहुत खराब है। आर्या तुरंत गांव पहुंची। उसने देखा उसके पिता बिस्तर पर लेटे थे, पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। आर्या उनके पास बैठ गई। रघुवीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बेटा, आर्या हैरान रह गई। मैंने तुम्हें हमेशा रोका क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब समझ आया कि सपनों को कैद नहीं करना चाहिए। आर्या रो पड़ी, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे जाने दिया वही बहुत था बाबा। उस दिन दोनों के बीच बरसों की दूरी खत्म हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्या वापस अपने गांव लौटी। अब वह एक अध्यापिका बन चुकी थी, गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे। आर्या ने गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे स्कूल बड़ा होता गया, दूर दूर से बच्चे आने लगे। एक दिन एक छोटी लड़की आर्या के पास आई और बोली, दीदी मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आर्या मुस्कुराई, तुम मुझसे भी आगे जाओगी। उसने आसमान की तरफ देखा, पंछियों का एक झुंड खुले आसमान में उड़ रहा था। उसे लगा जैसे वे कह रहे हों, अब तुम भी आजाद परिंदा बन चुकी हो। शाम का वही समय था, वही ढलता सूरज, वही आसमान, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आर्या फिर अपनी छत पर बैठी थी। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में उदासी नहीं, आत्मविश्वास था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, आर्या मुस्कुराई। आज उसने सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं किए थे, बल्कि गांव की कई लड़कियों
को भी सपने देखने की हिम्मत दी थी। कई लोग दूर

0: दूर से अपनी बेटियों को पढ़ाने वहाँ भेजने लगे। गांव की औरतें जो पहले घर से बाहर निकलने में डरती थी, अब अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने खुद आने लगी। एक दिन गांव की चौपाल में कुछ लोग बातें कर रहे थे। पहले कौन सोच सकता था कि रघुवीर सिंह की बेटी इतना बड़ा काम करेगी। सच कह रहे हो, अब तो गांव की लड़कियां भी बड़े सपने देखने लगी हैं। रघुवीर सिंह दूर खड़े सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। उधर आर्या बच्चों को पढ़ा रही थी। वह सिर्फ किताबों की बातें नहीं सिखाती थी, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती थी। वह बच्चों से कहती, लेकिन हिम्मत वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। जिले के अधिकारी भी आए। मंच पर आर्या को सम्मानित किया गया। जब उसे बोलने के लिए बुलाया गया तो कुछ पल के लिए वह शांत रही। फिर उसने कहा, मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपने सपनों को मारने नहीं दिया। मैदान तालियों से गूंज उठा। उस रात आर्या अपने कमरे में बैठी पुरानी चीजें देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ की पुरानी संदूक मिली। उसमें कुछ कपड़े, पुरानी तस्वीरें और एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से आर्या ने वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी आर्या, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तब भी अपने सपनों को मत छोड़ना। जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छा ऊंचा उड़ोगी। आगे के शब्द धुंधले हो चुके थे, शायद आंसुओं की वजह से। आर्या की आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी माँ आज भी उसके साथ है। उस रात वह बहुत देर तक आसमान को देखती रही। चांद की हल्की रोशनी में उड़ते पंछी उसे फिर दिखाई दे रहे थे। कई साल बीत चुके थे। आदित्य अब शहर में इंजीनियर बन चुका था। काम की वजह से वह बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन उसने कभी आर्या को नहीं भुलाया। एक दिन अचानक वह गांव आया। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ देखकर वह मुस्कुरा उठा। अंदर जाकर उसने देखा आर्या बच्चों को पढ़ा रही थी। वही आत्मविश्वास, वही चमक उसकी आंखों में अब भी थी। क्लास खत्म होने के बाद आर्या ने उसे देखा और खुश होकर बोली, आदित्य तुम। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। इतने सालों की बातें जैसे आंखों में ही उतर आई थी। आदित्य ने स्कूल को देखते हुए कहा, तुमने सच में अपने सपनों को उड़ान दे दी। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, और तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। उस दिन दोनों देर तक गांव के तालाब किनारे बैठे रहे। वही तालाब जहां कभी आर्या अकेली बैठकर अपने सपनों के टूटने से डरती थी। लेकिन आज सब अलग था। कुछ समय बाद आर्या को शहर के एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया। वहां कई छात्र और शिक्षक मौजूद थे। एक छात्रा ने उससे पूछा, मैम आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? आर्या कुछ पल शांत रही, फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आजादी का मतलब सिर्फ खुला आसमान नहीं होता, आजादी का मतलब है बिना डर के अपने सपनों को जीना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन बहुत सी लड़कियां आर्या से मिलने आईं। किसी ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, किसी ने कहा कि वह पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। आर्या हर किसी को एक ही बात कहती, अपने सपनों पर भरोसा रखो। शाम ढल रही थी। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। आर्या अपने स्कूल की छत पर खड़ी थी। नीचे बच्चे खेल रहे थे। दूर खेतों के ऊपर पंछियों का झुंड उड़ रहा था। हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ मैंने आपके सपनों को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब वह अकेली लड़की नहीं थी जो छत पर बैठकर आजादी के सपने देखती थी। अब वह उन हजारों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी थी जो उड़ना चाहती थी। आसमान में उड़ते परिंदे मानो मुस्कुराकर कह रहे थे, जो अपने सपनों से प्यार करते हैं उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। आजाद परिंदे कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को कभी बंदिशों में कैद नहीं करना चाहिए। मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। बेटियां अगर अवसर पाएं तो वे न केवल अपने सपनों पूरे करती हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनती हैं।
1: बहनों, अभी हमने माधुरी प्रजापति से उनकी कहानी सुनी, आजाद परिंदे। और इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर मैसेज भी उन्होंने दिया है, जो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा यदि हम इस पे अमल करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में संस्कारों को खास महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक होते हैं। परिवार और समाज में नैतिकता और सामाजिक शिक्षा की नींव इन्हीं के द्वारा तय होती है। संस्कार, सामूहिकता और सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का कार्य करते हैं। संस्कार सिर्फ परंपराएं नहीं है, बल्कि यह जीवन की नींव है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज को सशक्त और संतुलित बनाते हैं। आधुनिक युग में जब नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, ऐसे में पुरातन संस्कारों की अहमियत और आवश्यकता अधिक महसूस होती है। मैं वर्तमान समय में बहनों, संस्कार वह दीपक है जो आधुनिकता के अंधकार में हमें प्रकाश दिखाता है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिक और भौतिक प्रगति का युग माना जाता है। विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं ने इंसान के जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता, संवेदनशीलता, व्यवहारिकता, मानवता और मानवीय मूल्यों का भी इंसान के अंदर से धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। ऐसे समय में संस्कारों की आवश्यकता और महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि संस्कार जीवन को सुसंस्कृत, अनुशासित और संतुलित बनाने का काम करते हैं। व्यक्ति के अंदर शालीनता का निर्माण करते हैं। बहनों, आधुनिक और पारिवारिक यानी प्राचीन संस्कारों के बीच संतुलन का अर्थ है पुरानी मान्यताओं की आत्मा यानी नैतिक मूल्यों को बचाए रखना और उनके स्वरूप को आज की आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप बनाना। किसी भी परंपरा या संस्कार को मानने से पहले उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारण और उसके महत्व को हमें समझना जरूरी भी है। किसी भी बात को मानने या इनकार करने से पहले उसके महत्व को हमें समझना चाहिए, फिर उस पर अमल करना चाहिए, या यूं कहें कि उसे आत्मसात करना चाहिए। बहनों, संस्कार आत्मसंयम, धैर्य और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास कर समाज को सही दिशा प्रदान करने में सहायता करते हैं। आधुनिक समय की वैज्ञानिक सोच और परंपरा के नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन ही एक आदर्श जीवन और समाज की नींव होते हैं। आधुनिक युग हमें गति और विकास देता है, जबकि परंपराएं हमें दिशा और जड़ों से जोड़ती हैं। आधुनिक सोच और प्राचीन दृष्टिकोण का संगम हमारे जीवन को खुशहाल, प्रगतिशील और सामाजिक उत्थान का रास्ता प्रदान करता है। बहनों, आधुनिक और पुरातन पारंपरिक संस्कार दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पारिवारिक संस्कार हमें जड़ों से जोड़कर बड़ों का सम्मान करना, ईश्वर यानी कि आध्यात्म से हमें जुड़ना और परंपराओं से जुड़ना सिखाते हैं, तो वही आधुनिक संस्कार हमें बदलते समय में नई सोच में और नई तकनीक के साथ प्रगति करना सिखाते हैं। हमें इन दोनों ही दृष्टिकोणों को अपनाते हुए जीवन जीना चाहिए। वर्तमान में इन दोनों के बीच संतुलित समन्वय ही समाज को मजबूती प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को सुखी और खुशहाल भी बना सकता है। और अब इस चर्चा के बाद हम आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।
1: हाँ? क्या कहा?

बहनों, इस गीत के साथ ही आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे कार्यक्रम को सुनती रहें। इस भावना के साथ अपनी साथी वंदना को अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।

0: अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कलाकार है कालू सिंह चोपड़ा और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने कालू सिंह चोपड़ा और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रुति कलवे।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना एक देश, एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रूपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रूपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370

0: को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के

0: राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान

0: और अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजनीति के गीत से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज आदेश श्रीवास्तव, रोसेली और शशि।

फिल्म राजनीति का ये गीत सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अनिल कवचाले, सुषमा, आरती, सबीहा, रूपाली, श्वेता, पूजा, सीमा और उनके सभी साथियों ने गुमाश्ता नगर इंदौर से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश थी। लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, अनरत, हल्ले, लल्लूर, ऋषि और रैकवार परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश बंडा बेलई सागर से भेजी थी। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनवाने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से जीत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष और आयुषी ने। गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉ रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू। तो पेश है आप सबकी पसंद पर राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन।

शफकत अमानत अली की आवाज में आप सुन रहे थे निरंजन आयंगर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म थी माय नेम इज खान। फरमाइश करने वाले श्रोता थे अंबेडकर चौक खुरई से परमानंद आर्य, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू और तासू, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कोला रोड भोपाल से अपनी फरमाइश हमें भेजी। तो आप सबकी पसंद के इस गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं शंकर महादेवन और अलीशा मेंडोसा की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर शंकर एहसान लॉय का है, फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा ग्राम छैंगा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। बिलहरी बड़खेरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खां, सुमित, सुनील और उनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत अब आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है अनजाना अनजानी और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है भाटापारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेन्द्र कुमार वर्मा ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप से ने मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश हमारे पास आई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी, बेबी प्रियांशी ने शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेजी है। बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश है। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और गाजीपुर के

चेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश सावले पाटिल, राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजी नगर से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ मुखर्जी की

प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के इन मुख्य कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का रहेगा। इसके अंतर्गत सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल होगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा का आरंभ करते हैं युवा श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से।

0: साथियों डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम जी कहते हैं, आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ।
1: यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान शिखर को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो।
0: इसी विचार के साथ स्वागत है साथियों आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल और मेरे साथ हैं
1: राम स्नेही चौबे।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार। आज के विशेष अंक में हम लेकर आए हैं रोचक जानकारियां, वार्ता, आप सभी के लिए मधुर संगीत, तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक।
0: साथियों आज की पहली चर्चा का विषय है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस।
1: दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज ही के दिन यानी 23 जून को मनाया जाता है।
0: इस दिवस का उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को उजागर करना तथा समाज के विकास में लोक सेवाओं के योगदान का सम्मान करना है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।
0: साथियों लोक सेवा किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है।
1: दोस्तों सरकारी अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी जनता की आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
0: दोस्तों उनके प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास संबंधी योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं।
1: इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं।
0: दोस्तों इनका उद्देश्य लोक सेवाओं को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं को लोक सेवा के प्रति प्रेरित करना होता है।
1: आज के समय में पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित की भावना के साथ कार्य करना लोक सेवकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: आधुनिक तकनीक के उपयोग से लोक सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाया जा रहा है।
1: संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि लोक सेवाएं समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: हमें लोक सेवकों के योगदान का सम्मान करना चाहिए और बेहतर समाज निर्माण में उनका सहयोग करना चाहिए।
1: तो दोस्तों ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर, और कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों कार्यक्रम के इस अंक में आवश्यक है एक विशेष वार्ता की, जिसमें वार्ता का विषय है योग का महत्व। वार्ताकार है गर्मा चतुर्वेदी।
4: योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य देन है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने के लिए वैज्ञानिक पद्धति है। योग हमें स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में योग एक वरदान के समान है। योग हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया योग के महत्व को समझने लगी है। इसलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम योग क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा और मन शांत होगा, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। योग हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, मन को एकाग्र करता है और जीवन की अनुशासन लाता है। विद्यार्थी जीवन में भी योग का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान लगाने और स्मरण शक्ति बढ़ाने में योग बहुत सहायता करता है। योग के अनेक लाभ हैं।

सबसे पहले योग हमारे शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है। नियमित योग करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह मोटापा कम करने में भी मदद करता है। योग करने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य कई रोगों के खतरों को कम करता है। योग का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज कई लोग तनाव और चिंता से परेशान रहते हैं। योग और प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव को दूर करते हैं। नियमित योग करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। योग हमें क्रोध, भय और नकारात्मक सोच पर नियंत्रण रखना भी सिखाता है। योग विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। परीक्षा के समय होने वाला तनाव भी कम हो जाता है। जो विद्यार्थी नियमित योग करते हैं, वे अधिक ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। योग केवल शारीरिक और मानसिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। योग हमें धैर्य, अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मकता वाला जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें स्वयं को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में सहायता करता है। महर्षि पतंजलि का योग का जनक माना जाता है। उन्होंने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया है। हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि योग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। योग करने के लिए किसी विशेष उपकरण या अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ मिनट प्रतिदिन निकालकर हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सुबह के समय खुले वातावरण में योग करना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन और सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे योग अभ्यास हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हमें योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग न केवल रोगों से बचता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। योग और आधुनिक जीवन का मेल। आज के युग में विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लोग घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करते हैं, जिससे मोटापा, पीठ दर्द, गर्दन दर्द और आंखों की समस्या बढ़ रही है। ऐसे समय में योग हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। बहुत से लोग योग को केवल कुछ आसनों तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तव में योग एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग हमें सिखाता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और संतुलन लाते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें शांत और सकारात्मक बने रहना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में भी योग का महत्व बहुत ज्यादा है। विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई, प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं का बहुत दबाव रहता है। ऐसे में योग उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। योग करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और मन शांत रहता है। जो विद्यार्थी नियमित योग करते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होते हैं। योग उन्हें समय का सही उपयोग करना और अनुशासित रहना भी सिखाता है। महिलाओं के लिए भी योग के बहुत सारे लाभ हैं। योग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। यह तनाव कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। महिलाओं को जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में भी योग मददगार साबित होता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में महिलाएं योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रही हैं। बुजुर्गों के लिए भी योग का महत्व उतना ही है। योग केवल

0: युवाओं के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की ताकत कम होने लगती है और कई बीमारियां होने लगती हैं। नियमित योग करने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है, जोड़ों का दर्द कम होता है और मन प्रसन्न होता है। योग बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। योग और मानसिक शांति का भी आपस में बहुत ज्यादा मेल है। आज की दुनिया में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति खोते जा रहे हैं। योग हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। योग हमें क्रोध, ईर्ष्या, भय और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने की शक्ति देता है। योग और पर्यावरण। योग हमें प्रकृति के करीब लाता है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो हमें शुद्ध वायु और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। योग हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग का वैश्विक महत्व। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। भारत की इस महान परंपरा को पूरे विश्व में अपनाया है और योग दोनों के लिए ही गर्व की बात है। यह दर्शाता है कि योग संपूर्ण मानवता के लिए लाभकारी है। योग हमें केवल शारीरिक शक्ति नहीं देता बल्कि अच्छे संस्कार भी देता है।
1: साथियों, भी आपने सुनी योग का महत्व विषय पर यह महत्वपूर्ण वार्ता। वार्ताकार थी गरिमा चतुर्वेदी। और अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस।
2: साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को यानी आज के ही दिन मनाया जाता है।
1: साथियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विधवा महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों और सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है।
2: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया।
1: दुनिया के अनेकों देशों में विधवा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
2: कई बार उन्हें भेदभाव, उपेक्षा और असुरक्षा का सामना भी करना पड़ता है।
1: दोस्तों, ये शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस समाज को यह संदेश देता है कि विधवा महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
1: साथियों, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सम्मान और सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
2: विधवा महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
1: समाज को भी अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें सम्मान और सहयोग देना चाहिए।
2: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें महिलाओं को समझने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।
1: एक संवेदनशील और सम्मानपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हमें उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए।
2: दोस्तों, यह तो थी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। और अब समय हो गया है संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन से ये मधुर गीत।

0: साथियों अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता जैव विविधता के क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थी चंद्र प्रताप तिवारी से बातचीत।
2: हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं आप सभी जानते हैं समय समय पर हमारे बीच होते हैं हमारे अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ और आज हम बात करेंगे जैव विविधता और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए शोधार्थी चंद्र प्रताप तिवारी जी से। उनसे जानेंगे उनके अनुभव कैसे आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और शोध भी कर रहे हैं। तो चंद्र प्रताप तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया सर।
2: चंद्र प्रताप जी सबसे पहले हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसे आप काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या काम आप करते हैं?
3: जी मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट नाम का एक डिजिटल पोर्टल है, वेब पोर्टल है, यूट्यूब चैनल भी है इसका, जो कि विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों को कवर करता है, उनकी ग्राउंड जीरो से जानकारियां और उनको एक व्यवस्थित ढंग से दर्शकों के सामने पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है और जिसमें हमारा फोकस रहता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को जगह मिले। तो मैं इस संस्थान में असिस्टेंट एडिटर हूं और मैं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यावरण से जुड़े हुए, चाहे वो वन्य जीव संरक्षण हो गया, नदियों की बात हो गई, प्रदूषण हो गया, NGT या इससे जुड़े हुए जो विषय हो गए उन पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लाता हूँ।
2: जी जी बहुत बड़ा विषय है और बहुत व्यापक क्षेत्र है, तो आप कहाँ कहाँ अभी तक गए हुए हैं और क्या देखते हैं चंद्र प्रताप जी?
3: जैसे कि भारत विविधताओं का देश है और मैं भारत में पूरब से पश्चिम हर जगह पे जा चुका हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश गया हूँ, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह से मैंने रिपोर्ट की है और हर जगह की जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है वो अलग है और वहाँ पे जो समस्याएं आती हैं, वहाँ पे लोगों को जो समस्याएं आती हैं वो अलग तरह की हैं, वहाँ पे जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं वो अलग तरह की हैं। तो जैसे मैं अगर पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल लूँ, वहाँ पे हावड़ा एक जगह है, कोलकाता से थोड़े

0: आगे जाने पर पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: तो वहां पे वन्य जीवों को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, वहां पे वेटलैंड्स होती हैं, आर्द्र भूमि, जहां पे बहुत तरह तरह की पक्षियों की और अन्य जीवों की प्रजातियां वहां फलती फूलती हैं, उनपे उनके संरक्षण का मामला है। यहीं पे आप मध्य प्रदेश आ जाते हैं तो यहाँ पे नदियों से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं हैं। फिर एक आता है ऊर्जा को लेकर के, तो मैं गुजरात में एक जगह है मोढ़ेरा, वो सोलर विलेज है, वहाँ पे सारी जितनी भी बिजली की जरूरतें हैं गांव की वो सोलर से संचालित होती हैं। तो इस तरह से वो एक क्लीन एनर्जी, एक साफ, वो बिना कोयले बिना जीवाश्म ईंधन को जलाए हुए एनर्जी लाने का प्रयास वो गांव कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग मुद्दे हैं, कई जगह सकारात्मक मुद्दे हैं, कई जगह कुछ नकारात्मक चीजें हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हर चीजों को सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। एक पत्रकार के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसी के प्रयास में लगा हुआ हूं और उसी के प्रयास में मैं छतरपुर खजुराहो आया हुआ हूं।
1: जी, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। हम अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की या बायोडाइवर्सिटी में हो रही चेंजेस की, तो पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश में ये जो बीच का अंतर आपने देखा है, क्या बदलाव आप देखते हैं? लगातार पर्यावरण हम देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन होने लगा है, और हमारे जो पर्यावरण के स्रोत हैं, जैसे हम बात करें हवा, पानी, मिट्टी, ये कितने अब धीरे धीरे ये प्रदूषण से रहित नहीं हम कह सकते हैं, माने ये भी विषैले होने लगे हैं। तो क्या कुछ आपने देखा है, लोगों ने कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो इसकी रिपोर्टिंग में क्या आपने महसूस किया है?
0: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है सर, और बेहद जरूरी सवाल है कि जो क्लाइमेट चेंज, हालांकि शब्द पे मैं बताता हूँ, क्लाइमेट क्राइसिस ज्यादा उपयुक्त समय होगा, जलवायु संकट, क्योंकि क्लाइमेट तो धरती का अगर आप इतिहास देखें तो बदलता रहा है साल दर साल। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन की जगह है, वहां पे समंदर, एक डेल्टा क्षेत्र, इधर से नदियां जाती हैं और वहां पे डेल्टा बनाती हैं और समुंदर है, वहां पे सी लेवल, जो समुद्र का जल स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो उसके वहां पे कृषि करते हैं तो उनकी बार बार की हर बार होता है कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर भी वो कृषि करने को, वहां पे खेती किसानी करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर गर्मी बढ़ना, जिन पेड़ों पे, अब मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ अपने, अब मध्य प्रदेश के जंगलों में जो आदिवासी समुदाय है वो जंगली मधुमक्खियों का शहद निकालते हैं, अब वहां पे स्थिति ये होती है, या तेंदुपत्ता बुनते हैं, तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं, तो हीट बढ़ गई या कुछ ऐसे पर्यावरणीय कारण बने कि अब तेंदुपत्ते, उनको अच्छी क्वालिटी के पत्ते पेड़ों पर ही नहीं मिल रहे हैं, या वो पेड़ ही नहीं बचे हैं जहां पे मधुमक्खियां छत्ता बना पाए या उस छत्ते में पर्याप्त शहद आ पाए, तो इससे सीधे तौर पर उनकी आजीविका, उनके जो आय का स्रोत है वो प्रभावित होता है। तो अभी तक जो मेरी समझ में आया है, और जहां आपने प्रदूषण की बात की है, तो ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है, अलग अलग जगह पर AQI है कि वहां पे लोगों के स्वास्थ्य को, श्वसन को प्रभावित कर रहा है। तो शायद बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जरूरतें और लोगों का जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है जीवन जीने का, ये उसकी वजहें समझ में आती हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कई जगह पे ये कारण डॉक्यूमेंट किए जा चुके हैं, तो ये मुख्य कारण लग रहे हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी ये मुद्दा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम रहते हैं, या हम यूं कहें कि हम सांस लेते हैं, ये अगर दूषित हो गया तो सांस लेना मुश्किल होगा, और आगे आने वाला जो समय है उसमें और भी हमें नुकसान हो सकते हैं। हम चंद्र प्रताप जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, आपने देखा है कई राज्यों में आप गए हैं, तो जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या जलवायु का जो क्राइसिस हो रहा है, हम देख रहे हैं वातावरण लगातार गर्म हो रहा है, पहले की अपेक्षा खजुराहो या हम नौगांव की बात करें तो पूरे देश में उच्चतम तापमान रहा है हमारे नौगांव में, तो इसको कैसे हम संतुलित रख सकते हैं, तो इस संदर्भ में भी कुछ आप कहना चाहें, क्या कुछ बताना चाहेंगे?
0: खजुराहो और नौगांव की जैसे आपने बात की, ये तो एक, इसका एक भूगोल है जो इसे गर्म बनाता है, लेकिन क्या सिर्फ भूगोल ही एक कारण है जिसकी वजह से ये गर्म है और लगातार गर्म होता जा रहा है? तो इसका जवाब जो हमें ऑब्जर्व करने में, जिसका हम आकलन करते हैं, तो इसका जवाब है कि नहीं, सिर्फ भूगोल एक कारण नहीं है, और भी कई ऐसी गतिविधियां हैं, पेड़ कट रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, तो ये भी एक कारक हो सकता है। अब इससे आप भूगोल को तो बदल नहीं सकते और बदलने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं वो पेड़ लगाना, और उससे भी जरूरी जो बचे हुए पेड़ हैं उन्हें बचा के रखना।
1: जी,
0: 100 साल, 60 साल, 150 साल पुराने पेड़ हैं, महत्व तो नहीं

0: जान सकते आप, आपके लिए मुश्किल है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। उसमें कितने तरीकों के कीट पतंगे हैं, कितने तरीकों की चिड़िया हैं। जब फरवरी का मौसम आता है, जैसे ही ठंड आती है दिसंबर के बाद, तो बाहर से कई सारे बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, साइबेरिया यूरोप से माइग्रेट करके बर्ड्स आते हैं और वो ठंड के महीनों में यहाँ रुकती हैं भारत में, और उन पक्षियों का एक निश्चित पेड़ है जो उनका बसेरा है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर वो बर्ड्स आई और यहाँ पे उन्हें वो पेड़ नहीं मिला तो उनका क्या होगा, उनका तो साइकिल टूट गया। वो पूरी की पूरी एक बायोडाइवर्सिटी की एक चेन होती है, हर जीव एक दूसरे से लिंक होता है, वो बीच में टूट जाती है। तो जो पुराने पेड़ हैं, और मैं छतरपुर आ रहा था, कई गांवों के बीच से गुजरा हुआ, मुझे बरगद के पीपल के बड़े बड़े पेड़ दिखे, अच्छे घने पेड़ दिखे, उनको बचाना बेहद जरूरी है। अगर वो बचे रहें और जो नए पेड़ आप लगा रहे हैं, अगर आप लगाने के बाद उसको छोड़ ना दें, उसकी भी जिम्मेदारी लें, तो शायद स्थिति उतनी नहीं बिगड़ेगी जिसकी अभी कल्पना लोग कर रहे हैं।
1: जी, जल का संकट भी गहराता जा रहा है, इसके ऊपर आपने रिपोर्टिंग की है, क्या देखते हैं? धरातल में लगातार जल स्तर कम हो रहा है, क्या कारण ऐसा कुछ समझ रहे हैं? लोगों की सोच भी देखिए अब ऐसी हो गई, यूज एंड थ्रो की परंपराएं आ गई हैं। लोग कुएं से पहले जल लेते थे, धीरे धीरे वो जल बढ़ता था, ऐसा कुछ हमने सुना है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर नल आया, नल से हैंडपम्प आया, फिर अब जेट आ गए, उसके बाद अब अलग अलग परंपराएं बदल रही हैं, लोग अब मेहनत से भी बचने लगे हैं, तो इस संदर्भ में क्या रिपोर्टिंग हुई है?
0: जी, रिपोर्टिंग तो बहुत हुई है इस संदर्भ में, हमने खुद की है, हमारे संस्थान में ग्राउंड रिपोर्ट, और मेरे एडिटर रहे हैं शिशिर अग्रवाल, उन्होंने इस पे विस्तृत रिपोर्टिंग की है। लेकिन आपने भी कहा लोग मेहनत से बचने लगे हैं, तो मैं उनकी मेहनत के लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन भारत सरकार का एक पोर्टल है, एक कमीशन है, उसमें देश भर में जो भूजल स्तर है उसकी पूरी रिपोर्ट जो भारत सरकार ने संकलित की है वो डली है। आप अपने जगह की रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि आपके ग्राउंड वाटर का स्टेटस कैसा है, तो आप एक बार देखिए और आप पाएंगे कि भूजल स्तर एकदम से गिरता जा रहा है लगातार। और जो रिचार्ज होना चाहिए था, मतलब अप्रैल का जो उनका बुलेटिन था सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन का, उसके हिसाब से नर्मदा नदी का जो रिचार्ज है
1: जी,
0: काफी हद तक कम हो गया है, और ऐसा कमोबेश जो मध्य भारत की हर नदियों के साथ है। तो मतलब आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम फोन में बैटरी फोन चलाते हैं लेकिन उसको रिचार्ज भी करते हैं ताकि हम बाद में चला सके, तो हमने नदी जो जल है उसका उपयोग तो कर लिया लेकिन उसके रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं की। हम मूंग की खेती करते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे भूजल स्तर कम है, जहाँ पे पानी की समस्या है, और वहाँ पे हम लगातार जमीन से पानी खींच ले रहे हैं, और उसके रिचार्ज का हमने कोई साधन बनाया नहीं। और इसका पूरा का पूरा दोष मैं सिर्फ लोगों पे ही नहीं देना चाहता, ये एक सिविल सोसाइटी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर देश में, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ग्राउंड वाटर को बचाएं, जल स्रोतों को बचाएं, वहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसमें कचरा न करें, गंदगी न फैलाएं, और एक जिम्मेदाराना उपयोग करें।
1: हमारे युवाओं से क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं पूरी की पूरी बागडोर उन्हीं के हाथों में है, अगर युवा जागरूक रहेगा तो ये जो पर्यावरण के मुद्दे हैं वो धीरे धीरे सुलझ सकते हैं। हम अपने बारे में ही सोचते हैं, क्यों ना हम पूरे के पूरे देश के बारे में सोचे, एक ऐसा वातावरण हम तैयार करें जिसमें सभी व्यक्ति आराम से रह सकें। तो इस संदर्भ में कुछ मैसेज आप देना चाहें? लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जन चौपाल के माध्यम से गांव में जा के देखिए समितियां बनी हुई हैं, एनजीओज बने हुए, युवा भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन्हें कि आप अपने गांव जाएं, अपने माता पिता से बात करें कि ये पेड़ क्यों कट रहे हैं, 100-100, 200-200 साल पुराने आप पेड़ छोटे से काम के लिए काट देते हैं, तो इस संदर्भ में हम जागरूक रहें, कुछ मैसेज आपके?
0: मैं तो एक पत्रकार हूँ और बहुत थोड़ा सा अनुभव है मेरा, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब एक कोट से करना चाहता हूँ कि आप खुद को बदलेंगे तो आपका घर बदलेगा, और आपका घर बदलेगा तो आपका मोहल्ला बदलेगा। तो आप ये मत सोच के चलिए कि हमें पूरे देश को अपने आदतों को थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। आप कचरे को अगर आप सही तरीके से एक निश्चित डस्टबिन में डाल दें, है ना, तो उससे कई सारे आगे की, एक छोटे से कदम से आगे की कई सारी प्रोसेस आसान हो जाती है उन लोगों के लिए जो वो एक संयंत्र में कचरा छांटते हैं, उनका जीवन आसान हो जाता है, वो कचरा बाद में रिसाइकल हो सकता है कहीं पड़े रहने की बजाय। तो एक छोटा सा स्टेप कि आप एक कचरे को अलग अलग रखते, तो ये बहुत छोटी छोटी बारीक सी चीजें। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं कि आप अवेयर हों, आप जानकारी अच्छी लें, अच्छा साहित्य पढ़ें। ये बुंदेलखंड है और ये घाघ की धरती है, कभी घाग की धरती है, आप उन्हें पढ़ें, आपको पर्यावरण का महत्व सामने आ जाएगा। आप पर्यावरण से जुड़ी हुई अच्छी रिपोर्टिंग पढ़ें पक्षियों के बारे में, यहाँ कितने अच्छे अच्छे पक्षी मुझे दिख रहे थे खजुराहो में, तो आप उनके बारे में देखें, उनका महत्व जाने। तो जब आप पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां लेंगे और उनका महत्व समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर

0: से प्रेरणा तो आएगी ही कि हमें इनको बचा के रखना है। तो मैं कुछ इसमें दो तीन चीजें रेकमेंड कर देना चाहता हूँ कि groundreport.in वेबसाइट है, उसमें हमारी रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा एक किताब है तीसरी फसल, पी साईनाथ ने लिखी है, एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट, उसका हिंदी संस्करण है तीसरी फसल। आप वो पढ़ें और आकाशवाणी कैसे कार्यक्रम सुनते रहें।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपकी। तो श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे थे हमारे चंद्र प्रताप तिवारी जी से। आप पत्रकार हैं, पर्यावरणविद हम कहें तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, और खास ही साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर्यावरणीय पत्रकारिता। तो हमारे युवा दोस्त और हमारे साथी जो नागरिक हमें सुन रहे हैं, जरूर अपने पर्यावरण के प्रति वो सचेत होंगे। और जैसे हमारे कवि भी कहते हैं कि आप बदलोगे तो जग बदलेगा। अगर आपको आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है, कुछ अच्छा सा करना है, तो आपको स्वयं बदलाव लाना होगा और थोड़ा सा पर्यावरण की ओर लौटना होगा, तभी हम एक स्वस्थ और अच्छा पर्यावरण लोगों को दे सकेंगे। चंद्र प्रताप जी, आपसे एक अच्छी बातचीत हुई, उम्मीद है हमारे युवा साथी जुड़ेंगे और लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: शुक्रिया सर।
2: साथियों, भी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जैव विविधता के क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थी चंद्र प्रताप तिवारी से बातचीत।
3: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं आज के कार्यक्रम की आखिरी चर्चा, जिसका विषय है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
2: साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है।
3: इसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था।
2: साथियों, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
3: दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है,
2: ताकि उन्हें इलाज के लिए पैसों की कमी का सामना न करना पड़े।
3: दोस्तों, इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है,
2: सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
3: साथियों, योजना का लाभ देश भर में कहीं भी लिया जा सकता है।
2: इसमें कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी का उपचार शामिल है।
3: प्रधानमंत्री जन आरोग्य से लाखों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हुई हैं।
2: इससे गरीब लोगों का आर्थिक बोझ कम हुआ है और समय पर उपचार मिलने से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है।
3: साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत की एक जन कल्याणी स्वास्थ्य योजना है। यह गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
2: साथियों, ये तो थी जानकारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर, और अब रुकते हैं इस छोटे से अंतराल के लिए।
4: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
5: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दे देते हैं आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
3: पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर।
2: पदों की संख्या है 1500।
3: शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन की डिग्री।
2: आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
3: आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। साथियों, इसी क्रम में अब आपका मनोरंजन करवा देते हैं फिल्म सिर्फ तुमसे, ये मधुर गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज में फिल्म सिर्फ तुमसे ये प्यारा सा गीत,
1: जिसमें गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
0: साथियों, अब घड़ी इशारा कर रही है, तो जाने से पहले हम दे देते हैं आपको कल के कार्यक्रम।
1: कल आप सुनेंगे कॉफी हाउस कार्यक्रम और साथ में होगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और दी जाएंगी आपको रोजगार सूचना।
0: तो साथियों, अब अनुमति दीजिए अपने मित्र शिल्पी अग्रवाल
1: और राम सनेही चौबे को नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: अकबर अकबर हाथ लाया सड़ जाए।

वो लिखे थे शब्बीर अहमद ने, संगीतबद्ध किया था अमजद नदीम ने। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं स्वानंद किरकिरे का लिखा हुआ गीत, प्रीतम के संगीत निर्देशन में। आवाज है श्यामंतन दास की और फिल्म का नाम है फरारी की सवारी।

आइए अब सुनते हैं दबंग 2 फिल्म का गीत। आवाज राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की है, गीत समीर और अनजान का, संगीत साजिद वजद का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें कलाकार होंगे राम कुमार प्रजापति व साथी। शाम 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घरनी। इसमें सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। भेंटवार्ता होगी गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें विषय पर आकाश कुमार पांडे से बातचीत। और आज की सीख में सुनिए जरे पे नॉन डारद। रात 8 बजे भोपाल से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। रात 9:15 पर दिल्ली से सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर मनी टॉक। 9:45 पर मंथन। और रात्रि 10 बजे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। ये अब आपको बता दें कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए हिंदी काव्य पाठ मुकेश जैन से। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 8:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए गजानन माधव मुक्तिबोध के संस्मरण और हरिशंकर परसाई से बातचीत। सुबह 9 बजे लोकरंग के कलाकार हैं अरविंद कुमार। 9:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे विवाह फिल्म के गीत। 10:05 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का 11वां भाग। 10:10 पर सुनिए सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। भाषा होगी कन्नड़ और गीतकार होंगे बीआर गीता। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 1 बजे

0: महिला सभा कार्यक्रम, इसमें सुनिए वार्ता सपनों को साकार करती महिलाएं। वार्ताकार होंगी काजल सोनी, साथ ही सुने उपयोगी जानकारी। कल सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, इसमें सुनिए कॉफी हाउस। आलेख होगा खुशी खान का। प्रतिभागी होंगे अभिषेक मिश्रा, शिवांशु प्रजापति, राधिका वाजपेयी, महिमादीप पटेल। साथ ही सुनिए रोजगार सूचना। शाम 6 बजे भोपाल से होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा, इसमें कलाकार होंगे राहुल अनुरागी। 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, इसमें सुनिए धारावाहिक चिठिया देवर भौजाई की भाग 2। वाचन होगा साहब सिंह सेंगर का, प्रस्तुति होगी शंभु दयाल अहिरवार की। साथ ही सुनिए बुंदेली काव्य पाठ राम नरेश नायक से, और आज की सीख का विषय होगा जहां धुआं वहां आग। रात 8 बजे भोपाल से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। रात 9:15 पर दिल्ली से सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर चर्चा का विषय है, और रात्रि 10 बजे आपके लिए लेकर आएंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव
1: 444 Through the office of the Ministry of Textiles, Government of India.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन, सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल, दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट। व्हाट अ प्राउड मोमेंट,
0: गर्व के पल होते हैं नितिश ये, और ताज़िंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गणतंत्र मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए,
1: एंड ऑफ कोर्स द रिसिपिएंट्स विल नाउ स्टे पुट फॉर अ सेरेमोनियल फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व, प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीना। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका,

आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव

0: आवास है जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने सवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहा

0: 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बसंती। अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी, गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल कर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: शायद उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तुम विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक

0: जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा कर

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?

0: कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
1: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
0: ठीक है, चल। ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।

0: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
1: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
0: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
2: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
0: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
1: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
2: हाँ।
1: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
1: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
2: हाँ?
0: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
2: और क्या?
1: है।
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
1: खाली हमारे समझने से क्या होता है?

0: हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें कलाकार हैं राम कुमार प्रजापति व साथी। आइए इनसे सबसे पहले सुनते हैं भजन।

0: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय।
1: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
0: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
0: हाँ हाँ वही, उसके संचालक हैं श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
1: 8858920259।
0: 8858920259।
2: राम कुमार प्रजापति व साथी से आइए अब सुनते हैं बुंदेलखंड महिमा गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: राम कुमार प्रजापति व साथियों से आइए अब सुनते हैं बुंदेली गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: राम कुमार प्रजापति व साथियों से आइए अब सुनते हैं लोक शैलीबद्ध रचना।

0: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लोकधारा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सावन गीत। कलाकार हैं राम कुमार प्रजापति व साथी।

देखो भैया बहनों, अब अपन सभी जन ने सुनो जो बाल विवाह गीत शकुंतला राजपूत को गाओ भाओ, तो अपन हर पसंद भी आओ हुई है। और इस गीत के माध्यम से देखो कितनी इन्होंने बात कही गई है कि अपनी बिटिया जब पढ़ लिख जावे, समझदार हो जावे, तभी को ब्याह करना है। कैसे बारे में ब्याह कर वे से ना तो उनको शारीरिक विकास अच्छे से हो पाऊ और न मानसिक विकास अच्छे से हो पाऊ, और वहाँ अपने जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों को सामना करने आऊ थे। तो यही से जब अपना बच्चा अपनी बिटिया समझदार हो जावे, अपना लड़का समझदार हो जावे, तब भाई अपन उनको ब्याह करें। और देखो भैया बहनों, अगले लोकगीत के लाने हमारे पास जब पहली चिट्ठी आई है, ग्राम कनाय और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है सत्र प्रकाश अहरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, राम हित, ओम प्रकाश, राम रतन, राम बाबू, रजनीश, रविशंकर, लेखराम, लाला भैया, शिव किशोर, राम मिलन, राजकुमारी, किरण, बबली, ज्योति, प्रभा देवी, पूजा, दीपा, सुशीला, अर्चना, रचना और नैना ने ए लोकगीत के लाने जाए। एक और छुट्टी आई है देवरी।

और गणेश मिस्त्री। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है, अवार माता रोड बस स्टैंड रामटोरिया तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर से भेजने वाले भैया बहन हैं, बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, श्रीमती शीला, श्रीमती दशोदा, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, मोहिनी, गोलू, आयुषी और समस्त परिवार वाले। कई लोकगीत के लाने को चिट्ठी आई है, बेलड़ी से भेजने वाले भैया बहन है, हुकुम करमकार, सुनीता करमकार, हार्दिक करमकार और तनु करमकार। ए लोकगीत के लाने को चिट्ठी आई है, गांव फ्रांसी से भेजे वाले भैया बहन है, राजकुमार डुंडी, सरजीत सिंह डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी और हांसी शहर से भेजे वाले भैया हैं, राजू मिगलानी और बहन बबीता मिगलानी और सुभाष जोगी और डब्बू बब्बू। इन भैया बहनों ने सुनबो चाहो है लांगुरिया सविता यादव को गाओ भाओ। तो भैया बहनों सुनाते हैं अपन की मनपसंद को जो लांगुरिया गीत।

देखो भैया बहनों, अभी अपन सभी जन ने सुनो अपन की मनपसंद को जो लांगुरिया गीत सविता यादव को गाओ भाओ। और अगले लोकगीत के लाने हमारे पास जा चिट्ठिया आई है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, ये लोकगीत के लाने। एक और चिट्ठी आई है दतरंगी छत्तीसगढ़ से भेजे वाले भैया है भागवत वर्मा। और ए लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठिया आई है सरानी छतरपुर से भेजे वाले भैया बहन है कमलेश भैया, प्रदीप भैया, सुनील भैया, अनिल भैया, ऋषि कुंदन, हर्षवर्धन, शिवन्या, आर्या और प्राची। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से भेजे वाले भैया बहन है बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। ए लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठिया आई है ग्राम हरपुरा मड़िया पोस्ट खिरिया जिला टीकमगढ़ से भेजे वाले भैया बहन है इंद्रपाल सिंह राजपूत, इंद्र चंद्रपाल सिंह, देवी सिंह, उम्मेद कुमार, उर्मिला, प्रेम कुमार, नेहा, अंकिता देवी, अविता देवी और आरुषि देवी, आरएंस सिंह और अनीश सिंह राजपूत। ये लोकगीत के लाने को चिट्ठी आई है ननौरा श्रीनगर उत्तर प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है बलराम दास हरवार, श्रीमती कस्तूरी कुमारी आराधना, शोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। इन भैया बहनों ने सुन बोचा हुए उर्मिला पांडे को गाओ हो बिदाई गीत। तो भैया बहनों सुनते हैं अपन अपन की मन पसंद को जो गीत।

देखो भैया बहनों, अभी अपन सभी जन ने सुनो विदाई गीत कुल मिला पांडे को गाओ भाओ। और हमें खेद है कि हम अपन काम पूरा गाना नहीं सुना पाए, कैसे समय को विशेष ध्यान रखने आउट है और समय जल्दी जल्दी अपनी गति से बढ़त जा रहा है। तो भैया बहनों, जो भाव अपन की मन पसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी और जोन भैया बहन चिट्ठियां पाती भेजो चाहत है तो हमारा पतो लिख लियो। हमारा पतो है लोक मंजरी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी छतरपुर, पिन है 471001। तो ई पते पे अपन चिट्ठियां पाती जरूर भेजने हैं और अपनी फरमाइश भी लिख के भेजने हैं। हम अपन की चिट्ठियां पाती अगले कार्यक्रम में शामिल करें और अपन खा अपन की मन पसंद के लोकगीत जरूर सुनवा है। और भैया बहनों, अब है बारी आज की सीख की, विषय है जरे पे नॉन डारत। जा कहा तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक मुहावरो है कि कान लगा के जरे पे नॉन ना छिड़को। मतलब कोनो आदमी कोनो व्यक्ति पहले से दुखी है, परेशान है और अपन

ऊ खां बार बार दुखी करो या ऊ बात खां ओखारो जोन से बहुत दुखी है और या ऊ दुख खां याद दिलाओ तो वहां बहुत ज्यादा कष्ट होते। या कोनो भैया बहन हाँ मान लो पहले से नुकसान होगा हो वो बार बार अपन वही बात अनखा दोहराए या वहां तकलीफ देवे वाली बातें करें तो कान लगा के जले पे नॉन छिड़का। तो भैया बहनों अपन ऐसा नहीं करना है, हर भैया बहन की एक दूसरे की सुख दुख अपन का समझने हैं। कोनो भी भैया बहन से ऐसी बात नहीं करना जिसे कि उनको तकलीफ पहले से है और उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़वे। तो जा भाई आज की सीख और अब हो रही बेरा चलवे की तो अपन हम बता दें कल के कार्यक्रम। कल पंच भैया ग्राम सभा में सुने चिठिया देवर भौजाई की भाग दो को पुनः प्रसारण और वाचन हुई है साहब सिंह सेंगर को। इसमें प्रस्तुति है शंभुदयाल अहरवाल जी। और बुंदेली काव्य पाठ सुने राम नरेश नायक से और आज की सीख हुई है जहां धुआ वहां आग। और एक संकेत देव अपनी बहन भूमानिका आज्ञा। बहनों राम राम।

अभी घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
4: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और

0: राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
1: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोशियारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मेलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबु सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव शंकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
2: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव हीरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालखाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर

0: यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
1: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है, तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
2: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नोवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय

0: प्रिय रही। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंग भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
1: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
2: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
1: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
2: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए हैं।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियाँ शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: गुजरात में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियाँ थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुजमाड़ में गए थे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुजमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
5: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रखते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
0: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
6: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
7: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
6: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
7: जो हमारी परंपरागत किस्में थीं अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
6: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
7: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
0: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह

0: भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत, पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
1: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। गीत शैलेंद्र का था और संगीत शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में चाइना टाउन फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत रवि का।

जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

तेरे गहों क्यों जले, बैठ जाओ मेहरबान बल बल। घुट के मिस्टर क्यों चले, प्यार ते मेरे गहों क्यों जले, बैठ जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल।

आइए अब सुनते हैं एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज है, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत सलील चौधरी का है, फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: आइए अब सुनते हैं आराधना फिल्म का एक गीत। आवाज किशोर कुमार की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत एच डी बर्मन का।

फिल्म संगीत ने आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

किसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ

0: राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में

0: अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रासलफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है। कल

0: हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा

0: contribution to literature and education. A distinguished scholar, linguist, poet, and author, Professor Shauk has dedicated decades to preserving and promoting the Kashmiri language. Through his academic work, writings, and literary contributions, he has helped strengthen the cultural and linguistic heritage of Kashmir. His recognition reflects the importance of preserving India's rich diversity of languages and traditions. Speaking exclusively to Akashwani, this is what he said.
1: Kashmiri zaban ka pehla grammar likha jab main college mein tha. College mein hi maine pehli baar ek journal bhi start kiya. Khud hi apne haath se kalam se likhta tha. Uska naam tha Ash. और फिर लाल चौक में आकर शुपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता मन तो उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं तो उस को कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए तो उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में से मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर हालांकि कश्मीरी में मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन मेरी किताबें थी
0: Another inspiring recipient is Nilesh Manlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Manlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in facilitating thousands of organ donations and helping patients receive a second chance at life. His work stands as a powerful example of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashwani News.
2: ये सबसे बड़ा अवार्ड था आज भी मैं यही कहता हूँ आज पद्मश्री आने के बाद में भी मैंने यही कहा कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है इन सभी का सम्मान है आप सोचो वो निर्णय नहीं लिया होता वो बीज ही नहीं बोया होता तो क्या आज वो बीज वटवृक्ष बन पाता मैं हमेशा कहता हूँ जो बीज बोया गया जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है तो हमारे लिए तो जे देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं ये सभी का सम्मान है मैं ऐसा ही मानता हूँ
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashwani.
3: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin and I started learning violin. And that journey continued for 18 years after that. Plus one and plus two, I joined another school, PS Senior Secondary School. That was a turning point. A in education is very, very important today. See, any technology that you see, there's a good and bad. And it's very important to take all the good and eliminate all the bad. And this elimination of the bad comes from two good habits, good type of people who develop those systems. And then regulations. So three things play an important role. Today we have at least three, four companies who are working based on Shakti. and that is extreme.

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रियंका जी।
1: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
2: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केटप्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रहा। डीजीएसएनडी एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
1: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
2: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
1: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
2: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका जीएसटीएन है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, मतलब आपको

0: जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं। तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से, जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
1: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जेम की क्या भूमिका है, और छोटे व्यवसाय, हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
0: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी,

0: कार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
1: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है। एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी ही किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुँच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मेहर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास

0: शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहे।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है, और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जेम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह प्रसारण आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें हमारा ईमेल आईडी है AIR छतरपुर 1976@gmail.com। तो सुनिए अपनी फरमाइश का ये पहला गीत। सभी श्रोताओं को सुनीता शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहित का लिखा गीत। संगीतबद्ध किया था खयाम ने, फिल्म का नाम था कभी कभी। इस गीत के लिए फरमाइश आई आप सभी की। ये मेल आया है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ई मेल आया है मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल का। मुल्लापुर डाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से ये मेल आया है गगनदीप थांदी, चित्रा कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी और बेबी वामिका वाणी थांदी का। पद्मा टॉकीज नेपानगर से ये मेल भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। मोताला महाराष्ट्र से ये मेल आया है विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। ये कुछ पत्र हमारे हाथ में आए हैं। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से फरमाइश भेजी थी राम लखन भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से फरमाइश भेजी प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। चंडीगढ़ से फरमाइश करता है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से पसंद करने वाले हैं गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का अगला गीत।

के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था। तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना, शायर सच कहता था कि रूठे रब को मैं

आप सुन रहे थे मजबूर फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज थी, आनंद अक्षी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। फरमाइश आप सबकी थी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। गाड़की नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे। ये मेल आया है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का। कैथल हरियाणा से मेल आया है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल भेजते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। ये पत्र हमें मिले हैं फरमाइसी गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। पीपरपारा पालचुवा मुंगेरी से पत्र आया है उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। तीन महुआ खापरखेड़ा से ये मेल भेजा है तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती। मोटक्का माफी जिला खंडवा से ये फरमाइश भेजी है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल ने। अनूपपुर से हैं जय मंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। आप सभी हैं सावरगांव महाराष्ट्र से। इनके साथ में है रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे। आइए मनभावन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर।

आ पाए बहार आई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश आप सबकी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री और रमेश कौन। ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ईमेल भेजा है दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार ने। चंडीगढ़ सिटी से ये मेल आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मेल भेजा है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी ने। अनारकली बाजार जगराओं से ये मेल आया है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। गांव लोहगढ़ ठाकुररा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का ये फरमाइश करने वाले हैं प्रदीप ताम्रकार, श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, पारस ताम्रकार, अनंत।

ताम्रकार और समस्त परिवार, गायत्री मोहाल पनवाड़ी जिला महोबा से ये पत्र भेजा है शिव नारायण पांचाल, देव नारायण पांचाल, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज गुड्डी और अंकुश ने। ये ईमेल भेजा है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, सार्थक, आदर्श और अलौकिक चंसौलिया ने। कोरबा छत्तीसगढ़ से फरमाइश आए हैं जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजी यादव और समस्त यादव परिवार की। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहते थे आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आइए सुनते हैं मनभावन कार्यक्रम का अगला गीत।

सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

कन्यादान फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत था और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। फरमाइश भेजी आप सभी ने, एमएलबी रोड ग्वालियर से ये मेल भेजा है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना और एसके पप्पी। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी। जनकपुरी सहारनपुर से ये मेल है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलेज डिकेस्ट्रो का। फाजिल का पंजाब खेड़ा से ये हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी वाणी, आरवी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से ये मेल भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से ये हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। ये फरमाइश भेजी है गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। ग्राम दुर्गापुर पिछौर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से ये फरमाइश आई है मानसिंह आदिवासी, मीना आदिवासी, बिटिया वैष्णवी, मोहिनी, सत्येंद्र कुमार आदिवासी, हरविलास आदिवासी, राजकुमार और सुनीता आदिवासी की। तहसील मैरोनी जिला ललितपुर से ये फरमाइश भेजी थी कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी नामदेव, राम देवी, ब्रजेश देवी, अखिलेश देवी, लखनलाल चाहना, आकाश और समस्त नामदेव परिवार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

डोली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। रवि के संगीत निर्देशन में गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। फरमाइश आप सबकी थी, ये मेल है। दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना और रोनिका यादव। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले थे रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मास्टर मयंक, बेबी तनुप्रिया, कमलेश, विमलेश और इनके मम्मी पापा। दिल्ली शहर मोरी गेट से फरमाइश भेजी कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सुएब खान और नाबेद खान। पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये मेल आया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत सुनते हैं मन भावन कार्यक्रम का।

आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू का लिखा गीत था, आर डी बर्मन का संगीत। फरमाइशी मेल आप सभी ने भेजे नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, सूरज कुशल वर्मा और अजीत अमित वर्मा। बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पसंद किया था दिनेश वर्मा और करुणा विश्वकर्मा ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। वटिंडा रोड डबराली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तान्या नारंग ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। मोहम्मद हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से ईमेल भेजा है। मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। सारनी जिला बैतूल से फरमाइश भेजी अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाद्य, पंजाब राव निवलांकर और संदीप पाटिल ने। आइए आप सभी की श्रोताओं का पसंद का अगला गीत सुनते हैं।

एक कली मुस्काई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण का गीत था और संगीत दिया था मदन मोहन ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जीने की राह फिल्म से। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है। आनंद बख्शी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। नेपाल पैलेस सागर से ये मेल आया है, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपो, ऋषिका और रॉबिन राणा का। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। गरीब नवाज कॉलोनी बदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की, स्वाति और सभी परिवार वालों का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीश सेतिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति

0: और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया, साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।